पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

ॼणा चयन ज़ख़्मी थियण जी तस्दीक। अमरीकी सेंट्रल कमांड मूजिबि 17 जुलाई ते उर्दन में अमरीकी हमले में 2 अमरीकी अहलकार मारिजी विया हुआ। ज़ख़्मी थियल 4 अहलकारनि खे तिबी इमदाद ॾियण खां पोइ इस्पताल मां डिस्चार्ज कयो वियो। ईरानी हमलनि ख़िलाफ़ दिफ़ाई कार्रवाई दौरान 1 अमरीकी अहलकार गुम आहे। वारसनि खे इतलाह ॾियण खां पोइ मारिजी वियल अहलकारनि जी सुञाणप ज़ाहिर कई वेंदी।

अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान खिलाफ वही फौज ऑपरेशन से गौर। आलमी खबरू इदारे की रिपोर्ट मूजिब अमरीकी रिफ्यूलिंग जहाज इसराइल उमाणिया पाया वन ईंदड़ कुछ डीह में जंग शिदत इख्तियार कर सके थी। ट्रंप बिजली घर आम इंफ्रास्ट्रक्चर के निशानो बनाने जो इरादो रखे तो ईरान खिलाफ कार्रवाई जो हतमी फैसलो अजा ना थो। अमरीका जो मकसद ईरान से दबाव वधाए हर्मस लंग खोरण है। ईरान अमरीका से मफात यादाश्त अमल दरामद बाजाबता तौर मुअतल कर छो। ईरानी परदेही वजीर काजिम गरीब आबादी चयो त हू गालियों करे रहा हुआ पर अमरीका वायदा ट्रोड़े छड़ा जारियाई जारियाना कदम खया। नतीजे में ईरान भी उ नुकता मुअतल कर रो है जैते अमल जो वायदो कयो वो हाँ ईरान रुगो मुल्क के दफा में मसरूफ है। ईरान के सीनियर फौजी मुशीर मोहसन रजिए हाँ जंग से गड गालियों वाली पॉलिसी भी खत्म थी वही। अमरीकी हमला जारी रहा तो तकरार के इलाकई जंग में तब्दील छींदी। ईरान के हिकमत अमली जवाबी कार्रवाई से बदल है। दुश्मन मिजाइल फायर कया तो तहरान जवाब इन ताकतवर होंगे।

अमरीका जा ईरान जे शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर ते वधीक हमला ॾखण ऐं विच ईरान वारनि इलाइक़नि में पुलनि बिजली घरनि सुरंगनि ऐं सामूंडी पाणी मिठो कंदड़ प्लांट्स खे निशानो बणायो वियो हमलनि में शहीद थियल चइनि औरतुनि समेत अठनि ॼणनि जूं तस्वीरूं बि जारी केतिरा ई ज़ख़्मी ईरानी परॾेही मीडिया मूजिबि अमरीका मेरी टाइम कंट्रोल टावर खे निशानो बणायो वियो जासिक बेट ते हज़ारे शहरनि खे पाणीअ जी फराहमी मुअतल थी वई ईरानी रिपोर्ट बंदर अब्बास ॾांहुं ईंदड़ वेंदड़ रस्तनि ते रेलवे ट्रैक्स खे बि तबाह कयो वियो अमरीकी हमलनि में गुलिस्तान सूबे में ईरान ऐं रूस खे रेल ज़रिए ॻंढींदड़ पुल बि तबाह थी वई अमरीकी सेंटकॉम मूजिबि ईरान जे दिफ़ाई ऐं नेवल निज़ाम खे निशानो बणायो वियो आहे।

ईरानी फौज जा कोयत उर्दन बहरीन ऐं सऊदी अरब में अमरीकी फौजी अॾनि ते जवाबी वार। पासदारनि इनकलाब चयो आहे त उर्दन में अल रिज़क एयरबेस ते हमिलो करे 2 फायर जेट्स ऐं 3 अमरीकी जंगी जहाज तबाह कया आहिनि। हमले में केतिरा ई अमरीकी फौजी बि ज़ख़्मी थिया आहिनि। बहरीन में अमरीकी ड्रोन जे डिपो खे बैलिस्टिक मिज़ाइल्स ऐं ड्रोन सां निशानो बणायो वियो। बहरीन जे शेख ईसा एयरबेस ते अमरीकी जंगी जहाज़नि वारे हंध ते बि हमिलो कयो। कोयत में अलहमदी बंदरगाह ऐं सऊदी अरब जे शहर अलखर्ज में ब्रिज सुल्तान एयरबेस खे मिज़ाइलनि सां निशानो बणाए अमरीका खे वॾो नुक़सान पहुचायो आहे। कोयत बिजली ऐं डीप्लेसन प्लांट समेत आम हंधनि ते ईरानी हमलनि जी तसदीक करे छॾी आहे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ऐं कोयती परॾेही वज़ीर विच में फ़ोन ते राब्तो। परॾेही तर्जुमान मूजिबि ॿिन्ही अॻुवाणनि ख़िते जी ताज़ी सूरत हाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई। कोयती परॾेही वज़ीर पारां ईरान जे हमलनि ते सख़्तु ॻणिती ऐं इस्लामाबाद वफ़ामत यादाशनामे ते मुकमल अमल दरामद जी उमेद ज़ाहिर। ख़िते में अमन लाइ पाकिस्तान जी तहमीरी ऐं सालसी वारे किरदार जी साराह। इसहाक डार चयो त जंग बंदीअ जी वाइदनि जी पासदारी ऐं शिकताण वधाईंदड़ क़ौम क़दमनि खां पासो करण टर आहे। न्यूयॉर्क में मौजूदु नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार गॾियल क़ौमुनि जे सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस सां बि मिलाई ऐं आलमी अमन ते ॻाल्हि ॿोल। सिक्योरिटी फोर्सिस वाना में दहशतगर्दीअ जी वॾी कोशिशि नाकाम बणाए छॾी। बारूद सां भरियल गाॾी धमाके खां अॻु ई तबाह। कार्रवाईअ में हिकु ख़ारजी जहनम भेड़ो। 5 दहशतगर्द सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि गाॾीअ में धमाके दार मवाद इम्कानी तौर ते दहशतगर्द हमले में इस्तेमालु थियणो हो। घरू वज़ीर पारां फोर्सिस खे भेटा पेश। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां बलोचिस्तान जे वॾे वज़ीर सरफराज भुट्टीअ जी मुलाक़ात। सूबे जे इंतज़ामी सियासी ऐं दहशतगर्दी जी सूरतहाल खां आगाही। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त पीपल्स पार्टीअ दहशतगर्दीअ जे हवाले सां पहिरें ॾींहं खां वाज़े मौक़ुफ़ आहे। हू दहशतगर्दीअ ख़िलाफ़ शीअ जी भित जीअं बीठल रहंदा। बलोचिस्तान जे सियासी मसइलनि जो वाहिद हल ॻाल्हियूं आहिनि, ॻाल्हियुनि ते यकीन रखनि था। सरफराज भुट्टी आगाही ॾींदे चयो त ज़ियारत साने जी जांच लाइ पोयरनि जे मुतालबे ते जुडी क़ाइमु कई वई आहे। अमुन जे क़याम जे हवाले सां जल्द आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कोठाई वेंदी। पाकिस्तान भारतीय जहाज़नि लाइ फिज़ाई हदुनि ते लॻल पाबंदीअ में वाध करे छॾी। भारतीय एयरलाइंस ऑपरेटर्स या लीज़ ते ॾिनल जहाज़नि तोड़ी फ़ौजी जहाज़नि लाइ फिज़ाई हदूं इस्तेमालु करण ते पाबंदी हूंदी। पाबंदी में 24 अगस्त 2026 ताईं वाध कई वई आहे। सिंध जे क़ौम परस्तनि पंजाब जे न्यू जलाल केनाल खे सिंध जे पाणीअ ते धाड़े जो मनसूबो करार ॾेई छॾियो। तकरारी केनाल फौरी तौर बंदि करण

रोलाइड जो शिकार ऑफिसरनि जी मिली भगत सबब टे भेरा टेंडर थियण बावजूद कंहिं बि कंपनीअ खे ठीको न मिलियो। सिंध हुकूमत जी गैर संजीदगीअ ते केतिरा ई सवाल उथारे छॾिया। अक्रम वाह जे 3 साल अॻु बहाली शुरू थियणी हुई पर अञा ताईं का बि अघु भराई न थी सघी आहे। आलमी बैंक SWAT मनसूबे जी अघु भराईअ खे गैर तसली बख़्श करार ॾींदे चयो आहे त अक्रम वाह मनसूबो अञा ताईं टेंडरनि जी छंड छाण वारे मरहले में आहे। शहीद शाहनवाज भुट्टो जी 41वीं वर्सी मल्हाई वई नओं देरो हाउस में वर्सी तकरीब ऐं क़ुरान खानी। शहीद शाहनवाज भुट्टो जी नियाणी ससी भुट्टो ऐं खातून अवल आसफा भुट्टो ज़रदारी नओं देरो हाउस में वर्सी तकरीब में शिरकत कई। ॿिन्ही गढ़ी खुदा बख़्श में शहीदनि जी मज़ारनि ते हाज़िरी बि भरी। आसफा भुट्टो ज़रदारीअ चयो त भुट्टो ख़ानदान हमेशह अवामी हक़नि ऐं जमहूरी क़दरुनि लाइ बेमिसाल क़ुर्बानीूं ॾिनियूं आहिनि।

बेदर्दीअ सां क़त्ल थियल मासूम ॿारीअ जी क़ातिल सगी चाची निकिती। पुलिस कार्रवाई कंदे टिन वरियनि जी कलसूम जी चाचीअ समेत ॿिनि जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे वरितो। SSP मलीर मूजिब सगी चाची कलसूम खे क़त्ल करण खां पोइ लाश ॿोरीअ में बंदि करे छॾियो। क़ातिल औरत पंहिंजे सगे भाउ नादर ज़रिए लाश घर खां ॿाहिरि रखरायो। मासूम कलसूम खे सख़्त तशद जो निशानो बणायो वियो। हुन जी बि जांच जारी आहे। ज़ियातीअ जे लाइ 50 खां मथे माण्हू पकड़े DNA कराया विया आहिनि। अञा ताईं कंहिंजो बि मैच न आहे थी सघियो।

0: जी मिंटन चंद मिंटन जे फासले ते मां घर पहुंचण वारी हुयसि त मोटर बाइक्स ते चार ॼणा हुया अननोन पर्सन्स हुया चारनि वटि पिस्टल्स हुया ऐं गन पॉइंट ते हुननि मूंखां स्नैचिंग कई छा असां डॉक्टर्स एतिरा अनसेफ आहियूं जो पंहिंजे शहर खैपुर जे अंदरि पंहिंजे प्रोफेशन खे नेस्ट नथा करे सघूं छा असां पढ़ी लिखी करे हिन शहर में इन जे लाइ आया आहियूं त असां सां कुझु बि कंहिं महिल बि कोई बि वारदात थी सघे थी जस्टिस खपे एसपी खैपुर इमीडिएट एक्शन खणे
1: त अॼु असां घरां निकिरण सां ख़ौफ़ज़ुदा आहियूं असां घरां नथा निकिरी सघूं इन उमीद में त असांखे कुझु थी न वञे असांजा माउ पीउ बार बार इन ई फिक्र में हूंदा आहिनि त अलाए असां पंहिंजे जॉब ते पहुतासीं या न पहुतासीं असांखे इंसाफ़ खपे
2: खैरपुर खे कंध कोट कशकोट थो बणायो वञे पर मां सम्झां थो इन सारे अमल में जेके ख़ामोश धुरियूं आहिनि उहे शामिल आहिनि एस पी साहिबु हुन वक़्त ताईं बि को मोटरसाइकिल फोरू गिरफ़्तार न थियो आहे
3: असांखे कुझु न खपे जेको

0: हलदा तो मुझे नजर पौधो जी असा क्या मन था
1: खेरापुर में वधंदड़ बदअमनी ए लेडी डॉक्टर का फुर खिलाफ सिविल सोसाइटी लेडी डॉक्टर्स वकीलन ए शहरन जी एहतजाजी रैली अगवाणन चयो त फुर धाड़ा ए चोरी जो वारदातूं मामूल बणी वजी वयूं आहिनि पुलिस मुकमल तौर नाकाम आहे लेडी डॉक्टर नादिया लाशारी खां फुर कंदड़ जवाबदारनि खे फौरी गिरफ़्तार करे सामान वापसि करायो वञे मीरपुर खास में नारी अनोशा आराई जे पुरसरार मौत के पुलिस कत्ल करार दई छड्यो सरकारी फरियाद ते नारी जे बिन भाइरन ए बिन मामन ते केस दाखिल सेटेलाइट थाने जे हद में दाखिल केस में जणाए वयो आहे त अरन वरन जी अनोशा आराई के जवाबदारन कारा इल्ज़ाम ॾेई घोटा ॾेई कत्ल कयो नारी जे जिस्म ते तशद्दुद जा बि निशान मौजूदु आहिनि चंबड़ भरसा मदरसे में नींगर से बद फैली है कत्ल वारे केस में मकतूल नींगर के पी पुलिस जांच से खदशा जाहिर कर छड़ा नींगर के पी जो चवना है पुट से 10-15 दिन तक ज्याती कई वही वाके में ब जणा मुलविस नायन वधिक जवाबदार के जांच में शामिल किया वे वाके में बिन जणन के मुलविस दिखाया बिन के बचाने की कोशिश कई पई वे एसएसपी वाके की घण रुखी जांच कराए बिन मुलविस जवाबदार के भी गिरफ्तार करें

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
3: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम,
2: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
3: ये मासर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
2: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
3: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
2: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
3: गर्दन और कंधों के दर्द
2: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
3: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
2: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
3: फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम, दर्द सोजन वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
4: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो ख़ूबसूरत हर क़िस्म जी।

0: एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न दा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

अमेरिका जा ईरान जे शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर ते वधीक हमला रखण विच ईरान वारनि इलाइक़नि में पुलनि, बिजली घरनि, सुरंगनि ऐं सामूंडी पाणी मिठो कंदड़ प्लांट्स खे निशानो बणायो वियो। हमलनि में शहीद थियल चइनि औरतुनि समेत 8 ॼणनि जूं तस्वीरूं बि जारी, केतिरा ई ज़ख़्मी। ईरानी मीडिया मूजिबि अमेरिका मेरीटाइम कंट्रोल टावर खे निशानो बणायो। जासक बेट ते हज़ारे शहरनि खे पाणी जी फराहमी मुअत्तल थी वई। ईरानी पोर्ट बंदर अब्बास ॾांहुं ईंदड़ वेंदड़ रस्तनि ऐं रेलवे ट्रैक्स खे बि तबाह कयो वियो। अमेरिकी हमलनि में गुलिस्तान सूबे में ईरान ऐं रूस खे रेल ज़रिए ॻंढींदड़ पुल बि तबाह थी वई। अमेरिकी सेंटकॉम मूजिबि ईरान जे दिफ़ाई ऐं नेवल निज़ाम खे निशानो बणायो वियो आहे।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
1: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
0: अब दर्द को कहें अलविदा
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
0: जी हाँ,
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: ये ऑइंटमेंट
0: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
1: दर्द, सोजिश
0: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
1: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
0: गर्दन और कमर की तकलीफ,
1: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
0: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
0: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ मिंडी हन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म डीए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
4: ढाडो सुठो
3: जीए FM 88 नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज़।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है,
4: सुनते रहो GFM 90.8।

manzala pa.

0: यार ही गोडन जो सूर है चेल जो सूर तो मुझे जान ही करी छरिया।
1: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
2: Fakiri Analgesic Cream. दर्द, सोजन, वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News।

0: अमेरिका बाइडन जी बार बार भञकड़ी कई साबित थियो त अमेरिकी सदर जे सही जी का बि हैसियत नाहे। अमेरिका ते वधीक भरोसो नथा करे सघूं। बालादस्ती ऐं जारियत अमेरिकी पॉलिसीअ जो लाज़मी हिसो आहिनि। अमेरिका वधीक जंग ऐं पंहिंजी ज़िलत जो दग इख़्तियार करणु चाहे थो त असां मुकमल तौर तयार आहियूं। ईरानी क़ौम अहिड़ो सबक सेखारींदी जो अमेरिका सॼी ज़िंदगी विसारे न सघंदो। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई जो ईरानी क़ौम जे नाले ते पैगाम संदसि वणाए त ईरानी क़ौम शहीद रहबर खे अलविदा चई नई तारीख़ रक़म करे छॾी। मौजूदा मरहले में क़ौमी इतिहाद ऐं यकजहती बरक़रार रखणु वक़्त जी अहम ज़रूरत आहे। सियासी इख़्तिलाफ़नि खे हवा ॾियण खां पासो कयो वञे। اردن میں ایرانی حملے میں ب امریکی اہلکار مارجن ای چار زخمی تھن جی تصدیق۔ امریکی سینٹرل کمانڈ موجب 17 جولائی تھی اردن میں ایرانی حملے میں ب امریکی اہلکار مارجی ویا۔ زخمی تھل چین اہلکارن کے طبی امداد دین کا پے اسپتال میں ڈسچارج کیا ویو۔ ایرانی حملن خلاف دفاعی کارروائی دوران ایک امریکی اہلکار گم ہے۔ وارسن کے اطلاع دین کا پے مارجی ویل اہلکارن جی سنان ظاہر کی ویندی۔ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान ख़िलाफ़ वॾे फ़ौजी ऑपरेशन ते गौर। आलमी ख़बरू इदारे जी रिपोर्ट मूजिबि अमेरिकी रिफ्यूलिंग जहाज़ इसराइल उमाणिया पिया वञनि। ईंदड़ कुझु ॾींहनि में जंग शिदत इख़्तियार करे सघे थी। ट्रंप बिजली घरनि ऐं अहम इंफ्रास्ट्रक्चर खे निशानो बणाइण जो इरादो रखे थो। ईरान ख़िलाफ़ कार्रवाई जो हतमी फ़ैसिलो अञा नाहे थियो। अमेरिका जो मक़सदु ईरान ते दॿाउ वधाए हरमूज़ लंघ खोलाइणु आहे। कनोलहार में मासूम पुट पीउ हथां मुबैना तौर छुरीअ जा वार करे क़तलु। मदीना कॉलोनी में 4 वरनि जे फयाज़ खे छुरीअ जा वार करे क़तलु कयो वियो। बालड़ी जी माउ इल्ज़ाम भरियो त कुझु ॾींहुं अॻु मुड़ुस सां नाराज़ थी अमर जे घर रहंदी हुयसि। मुड़ुस राति देरि सां घर अची पुट खे छुरियुनि जा वार करे क़तलु कयो। पुलिस जवाबदार खे गिरफ़्तार करे वरितो। सखर में हथियारबंदनि जी फायरिंग, हिकु ॼणो क़तलु। डेंटर पेंटर कॉलोनी में हथियारबंद फज़ल रहमान खे गोलियूं हणी क़तलु करे विया। पुलिस जो चवणु आहे त वाक़िए जो कारण मालूम नाहे थी सघियो। जांच कई पई वञे। ऐं रावती जे कचे में पुलिस जो राति देरि सां ऑपरेशन। ड्रोन किरण सबबि औरत ऐं निंगरी मारिजी वियूं। ॻोठ छलोशर में ॾोहारनि ख़िलाफ़ पुलिस ऑपरेशन दौरान मुबैना तौरु ड्रोन हिकु घर जे मथां किरियो। ड्रोन किरण सबबि सूमरी ऐं निंगरी रिहाना शर मारिजी वियूं। औरत लतीफ़ा शर ऐं निंगरी शबाना ज़ख़्मी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: यार ही गोडन जो सूर ऐं चेल जो सूर त मुझी जान ही करे छॾी आहे। हलण वेहण हर कम ॾुखियो लॻे थो।
3: त पोइ छा अञा ताईं फ़क़ीरी एनल्जेसिक क्रीम इस्तेमाल न कई अथई?
2: न यार, छा वाकई फ़ाइदो करे थी?
3: बिल्कुल अदा, कुदरती जुज़नि सां तयार कयल फ़क़ीरी एनल्जेसिक क्रीम मुतासिर हंध ते जल्दी जज़्ब थी। सूर, सोडिय, जिस्म जी नसुनि जी छिक ऐं अकराहट मां आराम पहुचाइण में मदद करे थी। चेल जो सूर हुजे, गोडन जो सूर, कंध ऐं कुलनि जी तकलीफ़ या वर्जिश खां पोइ छिक, हर हालत में बेहतरीन साथी। फ़क़ीरी एनल्जेसिक क्रीम
2: इस्तेमाल कीअं कजे?
3: रुगो मुतासिर हंध ते ॾींहं में 3 खां 4 भेरा नरमी सां लॻाए ऐं आराम जो अहसास वठ। ऐं ॿुध, जेकॾहिं उमिरि या हज ते वञण जो इरादो अथई त फ़क़ीरी एनल्जेसिक क्रीम ज़रूरु पाण सां गॾु खणी वञां।
2: वाह, पोइ अॼु ई वठी ईंदसि।
3: फ़क़ीरी एनल्जेसिक क्रीम अॼु ई पंहिंजे वेझे मेडिकल स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो।
4: पंहिंजो शहर, पंहिंजो घर, सकरंट ऐं सकरंट जो आवाज़
5: GFM 90.8।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू ना मेरा हेटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध के माथे का झूमर,
3: DFM 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

लहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अजरक के रंगों से रंगी,
0: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज,
0: GFM 88 नेटवर्क।

और जो यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बहुत सारे, रिहाना खान बकर कहती हैं कि रिहाना खान फ्रॉम बकर, बकर से आप मुझे ज्वाइन कर रही हैं, तो जी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे ज्वाइन किया है। ऐसे ही आपने मेरे साथ रहना है हमेशा, ओनली ऑन संडे सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक रहता है, जैसा कि आपका मेरा साथ पूरे

खाली पेट इंसान कितने अंडे खा सकता है, तो इसका जवाब आपने मुझे देना है, क्योंकि अभी हम यहाँ पर जाएंगे न्यूज़ ब्रेक की तरफ थोड़ी देर में, और न्यूज़ ब्रेक के जैसे ही वापस आएंगे, तो वापस आने के बाद मैं कोशिश करूँगी आप लोगों से अपने सवाल का जवाब ले सकूँ। तो जी आपने तैयार रहना है और मुझे टाइमली जवाब देते रहना है, और उसके साथ साथ आपने मुझे जब जवाब देना है, तो जवाब देने के अलावा मैं आपको बताऊं कि आपने जो है वो

से मसरूर अहमद आरती सनाती असलाम कैसी मशाला जबरदस्त शो एंड खूबसूरत आवाज अंदाज प्रोग्राम का इंतजार था और आप आ गई, बहुत खुशी हुई। ऐसे ही प्रोग्राम करती रहो, हम सुनते रहे। थैंक यू सो मच जी। आज आप बिल्कुल सुने, मैं आप लोगों के लिए ही आती हूँ, आप लोगों से बात करने के लिए ही आती हूँ कि यार आप लोगों से बात होती रहे और हम लोग ऐसे जो है सलाम दुआ करते रहे। और उसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि हमारे साथ मौजूद हैं शक्कर गिल, कहते हैं कि रियाज मेहर का सलाम हो। थैंक यू, वालेकुम सलाम रियाज मेहर, आपने मुझे ज्वाइन किया है, ऐसे आपने मुझे ज्वाइन करते रहना है हमेशा हर संडे सुबह 11 से 1 बजे तक।

0: न्यूज ब्रेक से जैसे ही वापस आऊंगी तो वापस आके मैं कलेक्ट करूंगी आप लोगों से अपने सवाल का जवाब. तो जी रेडी रहिएगा. सवाल जिसने मेरा नहीं सुना, जिसने मुझे अभी ज्वाइन किया है, ज्वाइन करने के बाद अभी तक मेरा सवाल नहीं सुन पाया वो, तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे टाइमली ज्वाइन किया करें. और सवाल मेरा ये है आप लोगों को से कि आप लोगों ने बताना है कि भाई वो खाली पेट पे इंसान कितने अंडे खा सकता है. तो जी इसका जवाब आप लोगों से मैं इंतजार में हूँ. आप लोग मुझे जवाब दें और अपने पसंदीदा सॉन्ग का नाम जरूर शेयर करें ताकि मुझे और आपको पता चल सके कि आपका जवाब बिल्कुल ठीक था. तो यहाँ पर चलते हैं हम एक न्यूज़ ब्रेक की जाने वापस आएंगे. वापस आके करने की बातें रहेगा मेरे साथ, सुनते हैं न्यूज.
1: नौ शहरों मीरपुर खास लाड़काना सखर गूंज रही है हर जगह पर सिंध की आवाज जीए एफएम 88 नेटवर्क.
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज.

0: अमेरिकी हमलन के जवाब में ईरान जा भी खिते में मौजूद अमेरिकी अदन ते हमला ईरानी पासदार इनकलाब जो चवे अमेरिकी फौजी हदफन के निशानो बणायो आहे ऑपरेशन लाइटिंग डी सोरे मरहले में कुवैत में भी अमेरिकी फौजी अदन के निशानो बणायो अलदेरी कैंप में एक हथियारन दे डिबो है अलियल सालिम अडे ते पेट्रियट रेडार के निशानो बणायो हमले में फजाई निगरानी जे रेडार के भी निशानो बणायो वयो
1: ईरानी अमेरिकी दिफा निज़ाम के भी पार करे वयो उर्दन ते हमलन में अमेरिकी फौज जो वड़ो नुकसान करे विधो अमेरिकी ए रूसी मीडिया जे रिपोर्ट रूसी मीडिया चयो आहे ते ईरानी अमेरिकी दिफा निज़ाम पार कंदे हदफन के निशानो बणायो न्यूयॉर्क टाइम मौजूब ईरान 17 जुलाई ते उर्दन में अमेरिकी फौज ते चौथों हमलो कयो हमलन में केतिरा ई फौजी जख्मी थिया अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स भी तबाह कया वया।

तो जी वेलकम बैक वंस अगेन। और जैसा कि आप सुन रहे थे यहाँ पर हम लोग एक आवाज़ थी हमारे पास खूबसूरत थी जो कि हम सुन रहे थे फ़ैज़ अली की आवाज़ में एक सॉन्ग। तो जैसा कि आपने भी वो सॉन्ग सुना है और उसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे साथ और कौन मौजूद थे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि जो मेरा सवाल था जिसने मेरा सवाल नहीं सुना था, सवाल मेरा ये था कि आप लोगों ने मुझे बताना था कि खाली पेट पर जो है हम लोग इंसान एक कितने अंडे खा सकता है। तो किसी ने मुझे बोला कि 10 और किसी ने बोला कि यार सुबह उठ के वो नाश्ते में पहले पहले अंडे खा सकता है। तो जी आपने मुझे बताना कितने अंडे वो खा सकता है, लेकिन अभी तक मुझे किसी ने भी करेक्ट आंसर नहीं दिया और जिसने जवाब दिया है अपने पसंदीदा सॉन्ग का नाम नहीं बताया। तो मैं वो सॉन्ग कैसे प्ले करूँगी या आप लोगों को कैसे बता पाऊँगी कि यार जो है आपका सवाल का जवाब ठीक था कि या वो गलत है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताती चलूँ कि टाइम इज़ ओवर और जैसा कि आपको पता है कि सिर्फ हमारे पास 30-35 मिनट्स बचे हैं और उसके अंदर हमें फरमाइश सॉन्ग भी प्ले करने होते हैं और अपने पसंद के सॉन्ग भी मुझे प्ले करने हैं। तो जो मेरा सवाल का जवाब था, सवाल मेरा यही था आप लोगों से कि आपने बताना था इंसान खाली पेट पर कितने अंडे खा सकता है, और जवाब मेरा ये था कि जवाब इसका है कि यार इंसान खाली पेट पर सिर्फ एक ही अंडा खा सकता है, तो उसके बाद वो तो उसका पेट खाली नहीं रहेगा ना। तो ये चीज़ आपने मुझे बतानी कि जब एक खाली पेट पर इंसान एक अंडा खा लेगा तो उसके बाद खाली अंडे पेट कैसे रहेगा, भले वो उसके बाद 2 खाए 3 खाए या 10 खाए, तो उसके बाद वो पेट आपका खाली रहेगा ही नहीं। तो ऐसा ही चीज बिल्कुल। और तो आपको पता है कि यार वो जो खाली पेट पे इंसान एक अंडा खाएगा तो वो एक ही अंडा जो है वो उसका लास्ट में विनर है। तो मैं आपको बताती चलूँगी जिसने मुझे जवाब दिया था वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज आप लोगों ने जवाब के साथ अपना फरमाइश सॉन्ग नहीं बताया तो देन मुझे खुद ही जस्ट बताना पड़ गया। लेकिन अब मैं आपको बताऊँ कि हमारे साथ मौजूद जो है वो कहते हैं जलोड़ी से खाली शारी, कहते हैं जवाब है एक अंडा, और जी बिल्कुल एक अंडा ही, और कहते हैं कि साथ में गाना चलाना है फरजाना परवीन मंजत जो रुमाल कने के नू, और पता नहीं आपने क्या लिखा है। खैर ये ठीक है, हम आपका सॉन्ग ज़रूर प्ले करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि यार मेरे पास एक और सॉन्ग मौजूद है, पहले वो सुन लेते हैं और उसके बाद हम आपका हमारी सॉन्ग भी ज़रूर प्ले करेंगे। तो यहाँ पर सॉन्ग मैं प्ले करने लगी हूँ, तो सुनते हैं सॉन्ग को, इन्जॉय करते हैं। तो रहिएगा मेरे साथ।

0: सुनती है। यहाँ पर हम लोग एक और खूबसूरत सा सॉन्ग, और इसके अलावा देखते हैं कि हमारे पास कौन मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ कहते हैं कि भाई शकर के लिए सलाम और स्वीट सना कैसी हो, शो नाइस वाइस नाइस एंड आई एम वसीम फ्रॉम पन्नू आकिल। और साथ में कहते हैं कि मुझे आपका बहुत वेट होता है प्रोग्राम का। जी थैंक यू सो मच, आपको इंतजार होता है, ऐसे ही मुझे भी इंतजार होता है कि यार संडे कब आएगा और कब आप लोगों से मेरी बातचीत दोबारा से होगी। तो ऐसे ही जैसा कि आप लोग मेरा इंतजार कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर मैं भी आप लोगों का इंतजार कर रही होती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अच्छा लगता है कि यार कोई और भी हमारा, जब आप लोग इंतजार करते हैं तो हमारे वो दिन जो है ना, जब हम लोग इंतजार कर रहे होते हैं तो वो बहुत अच्छा लग रहा है, तो खुशी हो रही होती है यार। ठीक है, अगर हम लोग जैसे बात करने जाए, हमारे फ्रेंड्स भी हमारा वेट कर रहे हैं, तो यही चीज़ एक जो है ना अच्छी लगती है। तो ऐसे ये कि और ये बताएं कि सुबह किस किस की हो गई, किस किस ने अभी तक नाश्ता नहीं किया। जिसने नाश्ता नहीं किया वो मुझे अपने पसंद का सॉन्ग तो ज़रूर लिख के भेजे, ताकि मुझे पता चल जाएगा उस बंदे ने नाश्ता नहीं किया। तो आप लोग मुझे बताएं कि किसने अभी तक नाश्ता नहीं किया, वो मुझे अपने पसंदीदा सॉन्ग सुने भेजें, और अपने पसंद नाश्ता करते हुए फिर वो अपने पसंद का सॉन्ग सुने, तो ये मज़ा ही इसमें आ जाएगा दुबाला। तो एक काम करते हैं, आप लोग मुझे नाम भेजें और यहाँ पर चलते हैं हम एक छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ। वापस आएंगे, वापस आके करेंगे आपके पसंद के सॉन्ग को प्ले। तो जी रोएगा मेरे साथ, करते हैं बाकी की बातें बाद में।
1: सखर सिंध का राज दुलारा शहर,
2: जिसे जूमती है दरियाए सिंध की हर लहर।
1: सखर के हर अंदाज से बसी आवाज, जिए सखर FM। क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
3: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनर्जेटिक क्रीम,
1: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
3: ये मासर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
1: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
3: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
1: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
3: गर्दन और कंधों के दर्द
1: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
3: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
3: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द सोजन वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
4: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ 2 दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: करते हैं प्ले, थोड़ा हम चलाएंगे इसको और उसके बाद हम नेक्स्ट सॉन्ग पे चले जाएंगे, तो सुनते हैं इस सॉन्ग को।

तो जी जैसे कि सुन रही थी यहाँ पर हमने एक फरमाइशी सॉन्ग जो कि हमने सुना और यकीनन आप लोगों ने भी सुना होगा मेरे साथ मिलके। तो जी और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि भाई यहाँ पर अभी बहुत सारे सॉन्ग मेरे पास लाइन से मौजूद हैं। तो और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि भाई कोक स्टूडियो का सॉन्ग हमारे पास मौजूद है। जी वो सुनते हैं और सॉन्ग को देखते हैं वो कैसा सॉन्ग है। न्यू सॉन्ग है, आपको पता है कोई भी न्यू सॉन्ग होता है या कोई भी एक न्यू चीज़ होती है तो हमेशा मैं आप लोगों के साथ प्ले करती हूँ, आप लोगों के साथ सुनती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यार आप लोगों के साथ सुना इन्जॉय करना बड़ा अच्छा लगता है। तो आओ बात करने में बहुत सारी बातें जमा हो जाती हैं जिसमें हमारे सॉन्ग्स भी मौजूद होते हैं कि हम लोग आपस में एक साथ वो सॉन्ग सुन रहे होते हैं। तो ऐसे ही आज भी कोक स्टूडियो सीजन 9 का एक सॉन्ग है, मैं रास्ता मोमिना मोहतसिन का सॉन्ग है एंड जुनैद खान का। जुनैद खान तो फेवरेट एक्टर है ही मेरा, तो उसका सॉन्ग भी अच्छा होगा, मैंने सुना नहीं है लेकिन आपके साथ सुनते हैं। और मोमिना मोहतसिन भी बहुत खूबसूरत हैं और अच्छी एक्टर्स हैं, अच्छे सिंगर हैं, तो सुनते हैं इनको। तो आइए मिलके एक सॉन्ग सुनने को स्टूडियो सीजन 9।

0: साथ ही हम लोग यहाँ पर कोक स्टूडियो सीजन 9 का सॉन्ग मैं रास्ता और मैं ही हम सब मैं ही सफर जी कैसे हैं सुनने के बाद आप लोगों के जो है हालात तो यार ये सॉन्ग मतलब इस तरह के कोई भी कोक स्टूडियो का अगर हम सॉन्ग सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ही मतलब एक एक्साइटमेंट हो जाती है या हम लोग जो है जहाँ पर बैठे होते हैं वहीं पर ही गाना गाना शुरू कर देते हैं तो ऐसे ही शायद आपके साथ भी यही हो रहा होगा सिचुएशन में तो मुझे नहीं बता रहे वो बात अलग है लेकिन आपके साथ भी ऐसे ही हो रहा होगा यकीन तो जी यहाँ पर टाइम होता है वहाँ पर छोटे से शौक हम छुपे की तरफ जाएंगे जैसे ही जाएंगे वैसे ही वापस आएंगे रहेगा मेरे साथ उसके बाद बाकी की लाइन्स बाकी हैं सॉन्ग सुनने के लिए तो कर दिया है मैंने वेट खत्म मतलब बस जाते ही साथ वापस आना है तो रहेगा मेरे साथ
1: सखर सिंध का राज दुलारा शहर
2: जिसे चूमती है दरियाए सिंध की हर लहर
1: सखर के हर अंदाज से बसी आवाज जीए सखर FM 88 सखर की आवाज
2: जीए FM 88 नेटवर्क सिंध की
3: यार कुछ डीहन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो
4: त पोइ तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करी
3: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा
4: बिल्कुल फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंद ते आसानी सां जज़ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾे थी
3: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
4: न दा आसाबन जो सूर जोड़न जो सूर कंध ऐं चेल जी तकलीफ़ सट धक लॻण पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे
3: इस्तेमाल कीअं कजे
4: मुतासिर थियल हंद ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो जी हाँ फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट सूर खां आराम हर रोज हर कदम अड़ी वेजे स्टोर तां नालो वठी खरीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट
5: आप सुन रहे हैं
6: DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

सुनती हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: पाणीअ जी फरहमी मुअत्तल थी वई। ईरानी रिपोर्ट मूजिबि बंदर अब्बास ॾांहुं ईंदड़ वेंदड़ रस्तनि ऐं रेलवे ट्रैक्स खे बि तबाह कयो वियो आहे। अमरीकी हमलनि में गुलिस्तान सूबे में ईरान ऐं रूस खे रेल ज़रिए ॻंढींदड़ पुल बि तबाह थी वई। अमरीकी सेंटकॉम मूजिबि ईरान जे दिफ़ाई ऐं नेवल निज़ाम खे निशानो बणायो वियो आहे।

ईरानी फौज जा कोयत उर्दन बहरीन ए सऊदी अरब में अमेरिकी फौजी अड्डन ते जवाबी वार पासदारन इनकलाब चयो आए त उर्दन में अल रज़क एयरबेस ते हमलो करे ब फायर जेट्स ए टे अमेरिकी जंगी जहाज तबाह कया आहिनि। हमले में केतिरा ई अमेरिकी फौजी भी जख़्मी थिया। बहरीन में अमेरिकी ड्रोन जे डेपूअ खे बैलिस्टिक मिज़ाइलन ऐं ड्रोन सां निशानो बणायो वियो। बहरीन जे शेख ईसा एयरबेस ते अमेरिकी जंगी जहाज़नि वारे हंध ते बि हमिलो कयो वियो। कोयत में अल हमदी बंदरगाह ऐं सऊदी अरब जे शहर अल खरज में प्रिंस सुल्तान एयरबेस खे मिज़ाइलनि सां निशानो बणाए अमरीका खे वॾो नुक़सान पहुचायो आहे। कोयत बिजली ऐं डीसेलिनेशन प्लांट समेत आम हंधनि ते ईरानी हमलनि जी तसदीक करे छॾी।

सिक्योरिटी फोर्सिस वाना में दहशतगर्दीअ जी वॾी कोशिश नाकाम बणाए छॾी। बारूद सां भरियल गाॾी धमाके खां पहिरियां ई तबाह कारवाईअ में हिकु खारजी जनम भेड़ो। पंज दहशतगर्द सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि गाॾीअ में धमाकेदार मवाद इम्कानी तौर ते दहशतगर्द हमले में इस्तेमालु थियणो हो। घरू वज़ीर पारां फोर्सिस खे भेटा पेश। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां बलोचिस्तान जे वॾे वज़ीर सरफराज भुक्की जी मुलाक़ात। सूबे जे इंतज़ामी सियासी ऐं दहशतगर्दी सूरतहाल खां आगाही। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त पीपल्स पार्टी जो दहशतगर्दीअ जे हवाले सां पहिरें ॾींहं खां वाज़े मौक़ुफ़ हो। दहशतगर्दीअ ख़िलाफ़ शीह जे भित जीअं बीठल रहंदासीं। बलोचिस्तान जे सियासी मसइलनि जो वाहिद हल ॻाल्हियूं आहिनि। हू सियासी पार्टियुनि सां सियासी ॻाल्हियुनि ते यकीन रखनि था। सरफराज भुक्की आगाही ॾींदे चयो त ज़ियारत साने जी जांच लाइ पोयरनि जे मुतालबे ते जुडिशियल कमीशन क़ाइमु कई वई आहे। अमुन जे क़याम जे हवाले सां जल्द आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कोठाई वेंदी। पाकिस्तान भारतीय जहाज़नि लाइ फिज़ाई हदनि ते लॻियल पाबंदीअ में वाधि करे छॾी। भारतीय एयरलाइंस ऑपरेटर भारतीय मिल्कियत या लीज़ ते ॾिनल जहाज़नि तोड़ी फ़ौजी जहाज़नि लाइ फिज़ाई हदूं इस्तेमालु करण ते पाबंदी हूंदी। पाबंदीअ में 24 अगस्त 2026 ताईं वाधि कई वई।

सिंध जे कॉम्परसन पंजाब जे न्यू जलालपुर केनाल के सिंध जे पानी ते धाड़े जो मनसूबो करार ॾेई छॾियो। तकरारी केनाल फौरी तौर बंद करण जो मुतालबो। कौमी अवामी तहरीक जे सरबराह अयाज लतीफ अली जो चयो आहे त पंजाब ज़बरदस्ती सिंध जे हिसे जो पाणी चोरी करे रहियो आहे। सिंधूअ ते को बि केनाल या डेम क़बूल न आहे। गैर क़ानूनी जलालपुर केनाल रिथा खे हमेशह लाइ दफ़न कयो वञे। जीअ सिंध क़ौमी महाज़ जे चेयरमैन सनान ख़ान क़ुरैशीअ चयो आहे त न्यू जलालपुर केनाल गैर क़ानूनी मनसूबो आहे। ज़बरदस्ती केनालनि ज़रिए पाणी खयो पियो वञे। सिंधूअ ते को बि केनाल क़बूल न आहे। दरिया बचाइण लाइ सिंध जा माण्हू तारीख़ी जिदोजहद करण लाइ तयारु आहिनि। सिंध जे पाणीअ ते धाड़ो हणणु बंदि कयो वञे। हैदराबाद खां बदीन ताईं सीडा जे मनसूबे अक्रम वाह जी बहाली रोलाड़े जो शिकार आफिसरनि जी मिली भगत सबबि टे भेरा टेंडर थियण बावजूदि कंहिं बि कंपनीअ खे ठीको न मिलियो। सिंध हुकूमत जी गैर संजीदगी केतिरा ई सुवाल उथारे छॾिया। अक्रम वाह जी टे साल अॻु बहाली शुरू थियणी हुई पर अञा ताईं का बि अघु भराई न थी सघी। आलमी बैंक SWAT मनसूबे जी अघु भराईअ खे गैर तसली बख़्श करार ॾींदे चयो आहे त अक्रम वाह मनसूबो अञा ताईं टेंडरनि जे छंड छाण वारे मरहले में आहे। शहीद शाहनवाज भुट्टो जी 41 वर्सी मल्हाई वई नओं देरो हाउस में वर्सी तकरीब ऐं क़ुरान खानी। शहीद शाहनवाज भुट्टो जी न्याणी ससी भुट्टो ऐं खातून अवल आसफा भुट्टो ज़रदारी नओं देरो हाउस में वर्सी तकरीब में शिरकत कई। ॿिन्ही गढ़ी खुदा बख़्श में शहीदनि जे मज़ारनि ते हाज़िरी बि भरी। आसफा भुट्टो चयो त भुट्टो ख़ानदान हमेशह अवामी हक़नि ऐं जमहूरी क़दरनि लाइ बेमिसाल क़ुर्बानीूं ॾिनियूं आहिनि।

मलीर के इलाके कायदाबाद में बेदर्दी से कत्ल थे मासूम बारड़ी के कातिल सगी चाची निकती पुलिस कार्रवाई कंदे टिन वारियन की कलसूम की चाची है समेत बिन जवाबदार गिरफ्तार कर वरतो। SSP मलीर मूजिब सगी चाची कलसूम के कत्ल करने का लाश बोरी में बंद कर छो कातिल औरत पांजी सगी भा नादर जरिए लाश घर का बाहर रखायो। मासूम कलसूम के सख्त तशद निशानो बनाए वो उनकी भी जांच जारी है। ज्यादतिया के जांच लाए पंजा का मथे मानू पकड़े DNA कराया वह अजा तक कें जो भी मैच ना थे।

0: मिंटनि चंद मिंटनि जे फ़ासिले ते मां घर पहुचण वारी हुयसि त ॿ मोटर बाइक्स ते चार ॼणा हुया, अननोन पर्सन्स हुया, चारनि वटि पिस्टल्स हुया ऐं गन पॉइंट ते उन्हनि मूंखां स्नैचिंग कई। छा
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
4: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
5: GAFM 88
4: नेटवर्क
2: सिंध की आवाज़।

लोग व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर ड्रेस स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इनके बारे में जानेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि भाई वाकई इनका जो रिजल्ट है वो कितना शानदार है, इनकी क्वालिटी कितनी मस्त है और ये क्यों आप इस्तेमाल करेंगे। तो बिल्कुल जी बताएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए, इनके फ्री होकर हमारे इंतजार कर रही थी, ऐसे बहुत सारी अंटियां, अम्मियां, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान सुबह अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए तो जनाब आप जबरदस्त गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला, बिकॉज आली रे आली सदर आली बॉस आपके होंठों पर 440 की स्माइल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 की स्माइल लाते हैं। यहाँ पर ऐसा करते हैं, आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं, आगे से प्रोग्राम करते हैं जी एक बहुत ही खूबसूरत सी नात के साथ। तो बहुत ही खूबसूरत सी नात सुनते हैं, उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। तो बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए।

0: जी क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा फेवरेट वाली नाच जो कि आप लोगों के साथ साथ हमने यहाँ पर सुनी. और इसी के साथ साथ आप चुनाव प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो. स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. आपकी सिद्ध आपके साथ मौजूद मेरे साथ कौन है मुझे बताएंगे? बिल्कुल जी बताएंगे, कैसे बताएंगे वो तो बताएंगे, लेकिन साथ साथ आज के प्रोग्राम में टॉपिक क्या होने वाला है तो जरा वो भी बता देते हैं. ठीक है, तो आज के प्रोग्राम की अगर सवाल की बात की जाए तो वैसे आज मेरा दिल कर रहा है कि आप लोगों से एक ऐसा सवाल पूछूं जिसका जवाब जो है आप मुझे दें. तो आज के प्रोग्राम में ऐसा होगा कि हम जो है ना आज प्रोग्राम में कॉल्स लेने वाले हैं. आज के पूरे प्रोग्राम में तकरीबन कॉल्स ही होने वाले हैं, क्योंकि अक्सर ये है कि भाई लोग कहते हैं कि भाई एक ऐसा दिन रख लें हफ्ते में जिसके अंदर सारे जो है ना सारे लिसनर सारा जो प्रोग्राम है उसमें कॉलें करें. ठीक है, तो आज के सारे प्रोग्राम में हम सिर्फ आप लोगों की कॉल्स ही करने वाले हैं. और इसी के साथ साथ मैंने सोचा है कि आज आप लोगों से टॉपिक जो है वो भी कुछ ऐसे से रिलेटेड पूछ लेते हैं कि आजकल देखा जाए तो हर कोई जो है ना वो सारा दिन सिर्फ इसको देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं जी, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं या टिकटॉक, फेसबुक या फिर यूट्यूब. बस देखें तो सिर्फ रील्स हैं जनाब. और इसके अलावा रील्स देखते देखते हमारे जहन में ना एक और चीज भी बैठ जा रही है जिसे हम ऐसा समझ ले देंगे भाई ये अगर गाना आजकल ट्रेंड में चल रहा है तो जैसे जो चीज ट्रेंड में चल रही होती है, जो भी गाना ट्रेंड में चल रहा होता है तो वो गाना हमारे जहन पे बिल्कुल हावी हो जाता है और हम सिर्फ उठते बैठते खाते गाते वो गाना ही गा रहे होते हैं. तो अगर आज आप जो ही कॉल करेंगे हमारे प्रोग्राम में कॉल के जरिए शामिल होंगे तो आज आप बताएंगे कि आपके जहनों में आजकल कौन सा गाना है जो चल रहा है. मैं देखूं कि आपके यहाँ कैसा ट्रेंड आजकल चल रहा है, कौन से गाने हैं जो आज ट्रेंडिंग में चल रहे हैं शायद आप लोगों से मुझे पता चलेगा. तो अगर आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं और शामिल प्रोग्राम रहना चाहते हैं तो बिल्कुल जी आप हमें 8881 पर मैसेज कर सकते हैं. आज थोड़ा फेसबुक पर भी टेक्निकल इशू था तो उस वजह से हम आज लाइव भी नहीं आ पाए, तो मैंने सोचा चलो भाई इस चीज का थोड़ा सा फायदा उठा लेते और जो लोग कॉल्स के लिए कहते हैं तो आज जरा हम कॉलर्स को खुश कर देते. ओके जी, तो अगर आप हमें पैनल पर मैसेज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाएंगे, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाएंगे, टाइप करेंगे LRK, सिंगल स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, पूरा मैसेज लिखेंगे और उसे सेंड कर देंगे 8881 पर. ओके जी, बाकी कॉलिंग नंबर क्या है वो तो मैं आखिर आप लोगों को दूसरे लिंक में बता देती हूँ. ठीक है, फिलहाल जो है आप लोग अगर हमारे शो सुन रहे हैं तो पैनल पर मैसेज कीजिए और बताइए आजकल ऐसा कौन सा गाना है जो कि आप लोगों के जहनों पर सवार है. भाई ये स्क्रॉलिंग की वजह से है जो कि आप इतना ज्यादा रील्स देखते हैं, इतना ज्यादा टिकटॉक देखते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा गाना आजकल हमारे जहन पर है जो कि सवार हो चुका है. हम ये कह रहे हैं कि भाई ये ट्रेंड के चक्कर में तो हमने ना अपना दिमाग ही खराब कर लिया. तो बिल्कुल ऐसा है, आप आज मुझे बताएंगे और जल्दी से शामिल प्रोग्राम हो जाएंगे. ऐसे के साथ साथ आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये प्रोग्राम आप लोगों तक स्पेशली नशर किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. तो अगर आप भी व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस्तेमाल करने के तरीकेकार तो आप लोगों को बताए जाएंगे, लेकिन अगर आप इस्तेमाल करें तो इस्तेमाल करने के साथ साथ ऐसा सीन बन जाता है कि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए. अगर आप भी चाहते हैं हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर ये तमाम प्रोडक्ट मिले तो उसके लिए आपने डायल करना है 03-15-799-0595 बड़ी 315-79-595 ये नंबर तमाम डायल कयो जी तमाम जे करीबी जनरल स्टोर्स से भी व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल थी वन अवेलेबल थी ना तो तमाम के वठण में आसानी थी वठण में आसानी थी तो तमाम लगाए सकदा तमाम के लगाण में आसानी थी. सो बिल्कुल तमाम पांजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए चाहे तमाम के भी गोठ खायो सिटी खायो के भी एरिया खायो तां पांजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करायो तां वनी आसानी सा तमाम व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स सुजन या वरी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स सुजन उनन के तमाम वठी सगो था अवेलेबल कराए सगो था. सो नंबर ते तमाम लाजमी जेको रातो कजो अन का अलावा तमाम से ज्वाइन किना वनु था. सो हाने टाइम थी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठू था उन का जल्दी वापसी तमाने मोटी इंदासी तमाम करी न वंजो इते बैठा हो जो मा ओ ही वनी ओ ही मोटा थी. सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय White Age Beauty Products and the Skin Beauty Products. लगाते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए.
1: GAFM 88 Network, सिंध की आवाज.
2: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
3: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
2: अब दर्द को कहें अलविदा
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ.
2: जी हाँ,
3: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट.
3: ये ऑइंटमेंट
2: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
3: दर्द, सोजिश
2: और अकड़न से आराम पहुंचाने में मदद देता है।
3: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
2: गर्दन और कमर की तकलीफ,
3: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
2: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
3: और जल्दी जलन में मुफीद।
2: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
2: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: बहुत ही खूबसूरत सा गाना एंजॉय करें, गाना तो सुनेंगे लेकिन साथ साथ आपकी कॉलिंग की सेगमेंट की जाने भी आ जाते हैं, तो आपकी कॉल्स हैं जो कि आती जा रही हैं। आना स्टार्ट हो चुकी है, कॉलिंग नंबर है जनाब 0332132288। सो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट कॉल जो है वो पिक कर लेते हैं, देखते हैं फर्स्ट कॉलर कौन हमारे साथ मौजूद है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो
0: हेलो, वालेकुम अस्सलाम, केयर मौजूदा नालू बराए बुधाए जू इमामा आवाज तो थोड़ो कटजी पयो ना हाने सही हाने बुधाए नालो बेरे कॉल करना तो लगन दी उमेमा ओके सखर का कॉल किया छाला उमेमा अलहमदुल्ला ठीक आया। फर्स्ट टाइम तुझी कॉल लगी आ प्रोग्राम में
1: हाँ, माय भी दिया था, 5 कॉल।

0: चलो डी स्किन मतलब लॻाइण जो तव्हांजो फुल प्लान
1: आहे,
0: डी स्किन लॻाइण जो प्लान आहे तव्हांजो। चलो डी स्किन भलो आहे, बिल्कुलु डी स्किन भलो आहे। मूंखे इहो ॿुधायो त तव्हां कहिड़ो गानो ॿुधाईंदा, तव्हांजी अॼुकल्ह ट्रेंड में कहिड़ो गानो हले थो तव्हांजे तरफ़? आवाज़ कटिजी थो ॾाढो तव्हांजो मेमा, आवाज़ कटिजी थो इलाही तव्हांजो। तव्हां हीअं कयो, वराए तव्हां कॉल जी ट्राए कयो, ठीकु आहे? चलो थैंक यू सो मच उमेमा। फर्स्ट टाइम तव्हांजी कॉल लॻी, पर अॼु तव्हांखे छा थो लॻे त हीउ जेको नेटवर्क ख़राब जो मसलो अॼु थींदो या फिर उमेमा जी कॉल पहिरियां त सही हुई, अॻिते हली करे थोरो मसलो बणाए? ओके, ॾिसूं था नेक्स्ट कॉल पिक करे नेक्स्ट कॉलर कहिड़े सां सां गॾु मौजूदु आहे। कॉलिंग नंबर आहे 0333-212-1322-88। ऐं तव्हां कहिड़ो प्रोडक्ट इस्तेमालु कयो पिया इहो बि तव्हां खां पुछंदासीं बाबा। सो हैलो जी, वालेकुम अस्सलाम, केरु मौजूदु
2: आहे? रुस्तम अली पावर थो ॻाल्हायां, मूं पुनो खान पावर ताल के सेवन शरीफ।
0: ओके रुस्तम भाउ, छाला ख़ुशि आहियो?
2: शुक्र अलाए सानम, तव्हां ॿुधायो ख़ुशि आहियो?
0: अलहमदुलिल्लाह ठीकु आहियां। प्रोग्राम ॿुधो पिया?
2: हा प्रोग्राम ॿुधूं पिया, काफ़ी अर्से खां पोइ तव्हां लाइव कंदो प्रोग्राम, ॾाढी असांखे ख़ुशी पई थिए।
0: न न, मां त कोशिश कंदी रहंदी आहियां त तव्हांजी कॉलिंग वठंदा रहूं।
2: जी जी।
0: अच्छा मूंखे ॿुधायो कहिड़ो प्रोडक्ट लॻायो पिया? अच्छा तव्हां ख़बर आहे कहिड़ो क्रीम आहे, नालो अचे थो? ओके वाइट एच। अच्छा मूंखे ॿुधायो त तव्हांजे अॼुकल्ह मोबाइल में कहिड़ो गानो ट्रेंड ते हले थो?
2: इहो
0: थो हलेव? चलो ज़बरदस्त, कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदा?
2: वालेकुम
0: अस्सलाम, केरु झंडो मारी मरी वारी पहुची वियो? न न, बसि अॼु जे सॼे प्रोग्राम में काला वठंदासीं, सही आहे? टेंशन न वेठो, फुल मज़े में आयो, फुल मज़े में आयो,
2: नालो
0: त ॿुधायो माण्हुनि खे कीअं ख़बर पए मां कहिड़ो प्रोडक्ट थी ॿुधायां।
2: बाबा तव्हांजो क्रीम ऐं नालो मूंखे यादि कयव, दिलि त अचे
0: वञे। ईअं न कर, न ॾिस हाणे ईअं न कर, मां नेक्स्ट टाइम अगरि तव्हां कॉल ते अचो मां तव्हांखां नालो पुछां, तव्हां न ॿुधाईंदा न पोइ मां विणंदी, मां पोइ झेड़ो कंदासीं। मुंहिंजे मथां न, तव्हांजे मथां भरींदव तव्हां। मूंखे ॿुधायो त तव्हांजे मोबाइल में कहिड़ो गानो अॼुकल्ह ट्रेंड ते हले थो? चलो चलो, माना एॾो तव्हांखे इहो गानो वणी वियो आहे, ॾींहुं राति ॿुधो था?
2: इहो कलाम जाम वणी वियो आहे, इहो कलाम हुजे त पोइ असांजे

0: जी करे बैठो।
1: आखिर का गुलाम रसूल मरी अजीज सोलंगी कालू कलाचारी जुड़ भी तरह का गुलाम रही बलोच तजिक के बुजुर्ग अजीज जरवार के सबन के सलाम हो बतू प्यार।
0: चलो थैंक यू सो मच प्यारो कुर्बान भाव से सगट मौजूद हो ठंडो मरी खां उनका अलावा तमाम भी कॉल करे सको था कॉलिंग नंबर है 0332213228 नेक्स्ट कॉलर हेलो जी अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम
0: केर मौजूदा
2: जी रतो दे रखो अब्दुल रहमान सीरो
0: अब्दुल रहमान भा छाला खुश आयो
2: केर के ता खुश है अल्हम्दुलिल्लाह सब खुश
0: है अल्हम्दुलिल्लाह सब मजे में आयो तमा जी दुआ सा बुधायो प्रोग्राम बदो प्या
2: दिल
0: खुश करे छव मुखे बुधायो त तांजी मोबाइल में अजकल केड़ो गानो ट्रेंड ते हले तो यानी तुम थोड़ो घटे रील्स दिसन दा आयो मना ये न चई सकजे तो टेडन दोसन की याद कंदो प्यारो भा जी आवाज कट जी वियो ता जो आवाज कट जी हो ओके ओके ओके थैंक यू सो मच प्यारा भा तवा कॉल कई रतो देरो खा कॉल कई प्यारे भा ओके रतो देरो वाला मानू डाडा माशाल्लाह भला होना है दिसो उनन बुधायो त किथे किथे वाइटेश ब्यूटी क्रीम मिले थी केड़े करीबी जनरल स्टोर्स से आई उनन पक्क पान अवेलेबल कराई होंदी तवा पाना भी अवेलेबल कराए सगो था आई हते टाइम थियो आए बाबा न्यूज़ ब्रेक वठुंदा ठीक है उनखा पछि शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हुंदा वापसी जल्दी मोटी तवा देतु था तवा ते साई वेओ थोड़ो सबर कयो सा पटियो हाँ जी बिल्कुल माँ ओ हिया वनी ओ हिया मोटांती सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते रहिए खूबसूरतियां हासिल करते रहिए।

0: सखर में हथियारबंद की फायरिंग, एक जनो कतल, डेंटर पेंटर कॉलोनी में हथियारबंद फजल रहमान धमियो के गोलू हणी कतल कर छो। वारसन जो कातिल की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज, वारसन जो चवण है तो नौजवान के चार साल अग पसंद की शादी करण था कतल कर वो। नौजवान चार साल अग फजाना मेमन से पसंद की शादी कई हुई, खेस बिन बार औलाद है। अज सुबह फजल रहमान के फैसलो थे बावजूद कतल कर वो, संदस बार ए जाल भी कैद है।
1: राउंती के कच्चे में पुलिस जो रात देर से ऑपरेशन ड्रोन किरण सबब औरत नींगरी मारजी वयो। गोठ छलो शहर में डोहारिन खिलाफ पुलिस ऑपरेशन दौरान मुबैना तो ड्रोन एक घर के मथा किरो। ड्रोन किरण सबब सूमरी ए नींगरी रिहाना शहर मारजी वयो। औरत लतीफा शहर ए नींगरी शबाना जख्मी।

0: आहे। सिंधड़ी में छेड़े में माजी वेल गोठाने के वारसन जो कातिलन की गिरफ्तारी के लिए लाश रखी धरणो। गोठ मोहम्मद खान चांडे में कतल थियल चाकर खान चांडे के वारसन मुख चौक से धरणो हो। धरने सबब वीरपुर खास खिपरो ए सांगर रोड मुकम्मल बंद। गाड़ियों जो कतारों लगी व्यू। मकतूल के वारसन जो चवण है जैस तीन मुख्य जवाबदार गुलाम मुस्तफा चांडियो बया गिरफ्तार ना धरणो जारी रह।
1: सोलर ए बैटरी से डायरेक्ट हले।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: यार ही गोडन जो सूर ए चेल जो सूर तो मुझे जान ही करी छड़ी आहे। हलण वेहण हर कम दुख्यो लगे थो।
4: त पोइछा अन्या तई फकीरी एनल्जेसिक क्रीम इस्तेमाल न कई थई?
3: न यार, छा वाकई फायदो करे थी?
4: बिल्कुल अदा, कुदरती जुजन सा तैयार कयल फकीरी एनल्जेसिक क्रीम मुतासिर हंदा ते जल्दी जज़ब थी। सूर सोडियम जिस्म जी नसन जी छिक आई अकराहट मा आराम पहुंचाण में मदद करे थी। चेल जो सूर हुजे, गोडन जो सूर, कंध आई कुलन जी तकलीफ या वर्जिश का पोए छिक हर हालत में बेहतरीन साथी। फकीरी एनल्जेसिक क्रीम
3: इस्तेमाल किए कजे
4: रुगो मुतासिर हंद ते डीएम में 3-4 भेरा नरमी सा लगाए आई आराम जो एहसास वच आई बुध जेकरे उमरे या हजते वनन जो इरादो थई त फकीरी एनल्जेसिक क्रीम जरूर पाण सा गड खणी वंजा।
3: वाह, पोए अजी वठींदस।
4: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम अडी पांजे वेजे मेडिकल स्टोर ता नालो वठी खरीद करयो।
5: अजरक के रंगों से रंगी,
6: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
5: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
6: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: और नेचुरली हमें जो है वो निखार मिलना स्टार्ट हो चुका है. तो नेचुरली अगर आप अपनी खूबसूरती को बढ़ाना चाहते हैं बिना किसी केमिकल के प्रोडक्ट का इस्तेमाल किए, और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल लाजमी करके देखिएगा. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया गया प्रोडक्ट, और इसी के साथ साथ रात को लगाने वाला प्रोडक्ट है नाइट क्रीम है, तो इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल कीजिएगा. और इसके साथ साथ सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से आपको बहुत अच्छे वाले रिजल्ट देगा. तो बिल्कुल डी स्किन ब्यूटी क्रीम का आप इस्तेमाल कीजिए. उसके साथ आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करें तो आपको डी स्किन फेस वॉश भी परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि भाई आपको मैं बोलूं कि करना पड़ेगा क्योंकि जब आप दोनों चीजें साथ में इस्तेमाल करेंगे तब आप लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ यहाँ पर डी स्किन फेस वॉश भी अवेलेबल है. ये दोनों चीजें हैं बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट. और अगर डी स्किन फेस वॉश की बात करें यहाँ पर, तो डी स्किन फेस वॉश जो है जनाब ये हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है, जो कि आप लोगों की स्किन को हाइड्रेट रखता है, क्लीन बनाएगा और उसके अलावा मॉइस्चराइज रखता है. तो ये इतना क्रीमी सा फेस वॉश है, इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा. आपने फेस वॉश लगाकर देखे होंगे, लेकिन जब आप डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल जी आप जान जाएंगे कि आपके पास अब वाकई कोई अच्छा प्रोडक्ट अवेलेबल है. और अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपने डायल करना है 03-15-799-0595. बड़ी ट्रेस 15-799-595 ही नंबर तव्हां डायल कयो जे तव्हां जे करीबी जनरल स्टोर्स ते भी वाईटी जा प्रोडक्ट हुजन या वरी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजन, ये सब अवेलेबल थी वञनि. ठीक आहे, समझी विया हूंदा. सो बिल्कुल तव्हां अवेलेबल करायो ऐं पंहिंजी खूबसूरती ते थोरो ध्यानु ॾियो बाबा, फोकस कयो पंहिंजी खूबसूरती ते. ये न थे जो सब खूबसूरत थी वञनि, बसि तव्हां ई थोरो पीछे रहिजी वञो. तव्हांखे बि खूबसूरत थियण जो पूरो हक़ आहे बाबा, ऐं तव्हां जॾहिं हुसन हासिल करे वेंदो ऐं तव्हांखे जॾहिं खूबसूरती मिली वेंदी पोइ असली ही गानो तव्हांखे डेडिकेट कंदासीं. हाली त ही गानो उन्हनि माण्हुनि खे डेडिकेट कयूं था जेके माण्हू पहिरियां खां डी स्किन ब्यूटी क्रीम या वरी वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु कनि पिया. सो साईं तव्हांखे ही गानो डेडिकेट अथव.
1: Oh my God.

0: आसिया वाके गुल्ला आओ बा
1: हर अदा तू जी मस्तानी को गईया दिल दीवानी
2: वाह सही वाह
3: रुलाए छजी राजन के

0: ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಇರ್ತದೆ ಚಕ್ಕ ದಿಲ್ ತೋ ಸಾಮೋಜಿ ಪಾಗಲ್ಲ
1: ओदी गाना तक हे बुधना सी तमा सा गाली में कनासी पैनल जी तरफ अचू था त पैनल ते तमा जा खोट सर मैसेजेस जमा थी वया त उनन के भी शामली प्रोग्राम रखी बैठू था आई दिसो त पैनल ते केर के रसा से गड मौजूद आ है सो बाबा अच्छा चाचा खालिद जुड़े जो हमारे साथ मौजूद की थी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम ओके जी आपको खुश आमदीद कहा जाता है और मीरपुर खासी अब्दुल्ला महर के थे अस्सलाम वालेकुम बाजी वाइटिश ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है ओके जी इस्तेमाल करते रहिए और चाचा खालिद कहते हैं बेटा सॉन्ग रिक्वेस्ट ओके मैं कोशिश करूंगी आपकी पसंद का गाना लगा लेते और कहते हैं कि आप तो कहीं भी नहीं है हाँ ये बात भी वैसे इसीलिए तो मैं जानना चाहती हूँ कि आजकल कौन कौन से ट्रेन चल रहे हैं समझ रहे हैं आपने बता दिया कौन सा ट्रेन चल रहा है ओके जी ओके वैसे अभी आपके यहाँ जो ट्रेन चल रहा है ये थोड़ा सा पुराना हो चुका है हमारे यहाँ चलें जी अच्छी बात है इंजॉय करिए और ये हमारे साथ हैप्पी गर्ल कहती है अस्सलाम वालेकुम सिद्धू जानी क्या हाल है आपके ठीक है जी जी मैं ठीक हूँ आप बताएं आप कैसी और कहती है अल्लाह पाक आपको जिंदगी की हर वो खुशी दे जिसकी आप मुंतजर हैं आमीन और इंशाल्लाह और ये हमारे साथ है याली मदद अली नवाज नूरपुर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी बहुत शुक्रिया एंड खुश आमदीद कहते हैं आपको और हमारे साथ ही वरियाम अली जतोई कहते हैं सिद्रा बहुत प्यारा शो है एंड बहुत लवली वाइटेज क्रीम भी है क्या बात है वाइटेज लवली क्रीम आप इस्तेमाल करके देखिएगा या फिर इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक से बताइए

0: Okay, the vast sign was to Gano, your Waki Maris today. So D's can beauty cream agar tama base istemal karan chahiyo tha to bilkul istemal kare baba khoobsurti yani tamari tamaji athan me thava so the D's can beauty cream tama venda vathinda ai panje khoobsurti ke safai chikno bana charinda D's can beauty cream agar tama va D's can face wash bhi aaye tama bhai cheezu lagaye sago tha ya bhale tama agar cream natha lagaye to ta D's can jo face wash try kare diso theek a ओके जी अस्सलाम वालेकुम चंदा ये हमारे साथी चंदा जानी आप कैसी है वेलकम टू शो इतनी मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ किया करें क्योंकि जहां इंसान का हौसला खत्म हो जाता है वहां से रहमत खुदावंदी शुरू हो जाती है ओके जी कहती हैं अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबकी परेशानियों को दूर फरमाए आमीन आमीन आमीन और हमारे साथी जी चाचा खालिद कहते हैं मेरी कॉल तो मिलती ही नहीं मैं कहां जाऊं मिल जाएगी अच्छा ये मोहम्मद समान भाई हैं वेलकम बुआ जी हम कह रहे हैं कि हम एफबी को ऑन कर रहे हैं लेकिन आप वहां से पैनल की तरफ हाँ जी बिल्कुल आ चुके क्योंकि ये हम मासूमों के साथ नहीं ऐसा है कि थोड़ा सा मसला था फेसबुक के ऊपर इसी वजह से आज लाइव नहीं आए वैसे मुझे तो पता है कि मेरी जो पाली पाली लिसनर्स हैं अगर मैं कहीं पर भी बैठी रहूं तो वो मुझे ढूंढ ही लेंगे अच्छा साइमा मीर हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम माशाल्लाह संजी सदा बहार आज सिदरा की आही खुशाही शो मस्त मस्त है लेकिन नेटवर्क ने थोड़ा सा बेड़ा गर कर दिया है पता नहीं क्या हो गया अपना ख्याल हाँ ये आपने बिल्कुल सही लिखा और कहती है कि कल वाले शो में तो कुछ ज्यादा ही खराब था भाई पता नहीं वाकई नेटवर्क का क्या इशू है और ये है कि एक नेटवर्क के ऊपर मैंने थोड़ा सा ये देखा था कि भाई आजकल नेटवर्क इतना क्यों ये लिमिटेड हो गया है या आजकल इतना नेटवर्क का क्यों मसला है तो असल बात पता है क्या है क्योंकि हर एक मुल्क को ना मतलब लिमिटेड नेटवर्क दिया जाता है इतना नेटवर्क ये एक मुल्क के लिए दूसरे के लिए इतना तो हमारे पाकिस्तान में जैसे देख रहे हैं आप जैसे फोन्स बढ़ते जा रहे हैं एक घर में 10 फोन्स हैं तो जाहिर बात है उतना नेटवर्क सारे फोन्स यूज करेंगे तो वो नेटवर्क जब सारे लोग एक साथ जब यूज कर रहे हैं तो लिमिट जो है ना वो थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है इसी वजह से नेटवर्क का इतना ज्यादा मसला हो गया है पहले देखे फोन्स थोड़े हुआ करते थे नेटवर्क क्लियर आता था तो अब ऐसा सीन है कि वो इसी वजह से नेटवर्क का मसला चल रहा है तो कोशिश करें कि कम से कम फोन यूज करें ताकि सबको सही से नेटवर्क मिले वैसे एक घर में 10 फोन्स मुझे नहीं लगता कि ये चीज सही है वेल ठीक है जी और यहाँ पर हमारे साथ चाचा खालिद कहते हैं एक भी मैसेज आपने रीड नहीं किया मैं कर रही हूँ जी थोड़ा सब्र किया करें और देखिए ये लिंक अगर आपके मैसेजेस में निकल जाएगा तो फिर अगला जो लिंक आएगा उसमें आप लोगों की कॉल्स होंगी ठीक है और उसके अलावा कहते हैं हाँ भाई नेटवर्क ये जो है ना पैनल पर मैसेज थोड़े महंगे हो जाते हैं तो इसीलिए बार बार नहीं करें एक दो मैसेज करें जो कि थोड़े से सही हो मतलब काम वाले और मोहम्मद समान कहते हैं माँ भी कॉल ट्राई कया अला करी लगी वने बिल्कुल अला कंदो लगी वेंदी तां ट्राई करे ॾिसो और गोठ मोहम्मद तैयब थेबू खां बि बुला थेबू कहते तव्हांजो शो वेरी नाइस आहे सलाम तव्हांखे वालेकुम असलाम भा तव्हांखे मोहबतूं साइमा कहती वाह जी वाह आज तो आपने दिल नहीं दिलिया जीत ली क्या गाना लगाया है परसों बाद माई मोस्ट फेवरेट गाना बिल्कुल आज मैंने कोशिश की थी कि अच्छे अच्छे गाने लगाऊं और कहती हैं टॉपिक में ऐसी चीजों को अपने सर पर सवार नहीं करती नो वॉचिंग अच्छा करती और उसके अलावा हैं जी विलेज मोहम्मद उस्मान बिरोही सकरन से अली अकबर बिरोही वालेकुम अस्सलाम सिद्रा कब आएंगी मैं आ गई हूँ जी प्रोग्राम कर रही हूँ और कह रही बाजी आप कैसी है तबीयत कैसी है प्रोग्राम में गुड प्रोग्राम है आपका बाजी अच्छी आवाज के साथ प्रोग्राम गुड है और आपका पुराना लिसनर अली अकबर बिरोही बाजी हमसे नाराजगी है क्या हमारी फरमाइश प्ले नहीं करती आज सॉन्ग सुनाएगा बिरोही डेडिकेट भाई मोहरम अली बिरोही सोट फेस मोहम्मद बिरोही मोहम्मद हनीफ बिरोही मासाद वफा आबिद बिरोही बाजी सिद्रा आज फेसबुक पर नहीं आई फेसबुक पर इशू था थोड़ा इस वजह से नहीं आई और उसके अलावा हैं जी कराची से सलाम भाऊ जी हाउ आर यू फाइन टॉपिक हल्ला गुल्ला मूवी का सॉन्ग हल्ला गुल्ला प्ले कीजिएगा तो आपकी मेहरबानी नहीं तो थैंक्स वैसे जयपाल भाई आप कहाँ थे और ये किसी का खाली मैसेज मुझे मिला है, तो अगर ना उनका नाम लिया जाए या मैसेज पढ़ा जाए तो समझ लीजिएगा कि वो हमारा ही मैसेज था, हम ही बदनसीब थे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है ना टाइम की जानब देखा, तो भाई टाइम यहाँ पर हुआ चाहता है कि शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ली जाए। ब्रेक से पेड़ भी जरूरी है बाबा, सो प्रोग्राम आए व्हाइट एश एंड जी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो ब्रेक के बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं, सुनती रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एश एंड जी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाते रहिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए।
1: FM 88 Network, Sindh ki Awaaz.
0: Khoobsurti hai jo asal raaz. सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम, इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अमाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ?
1: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अड़ी वेजे स्टोर तां नालो वठी खरीद करियो। फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

ओके जी, सो हमारे साथ दर्द दिल भी मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया दर्द दिल। और हमारे साथ हैं जी फजीला सिंधी, वालेकुम अस्सलाम, आपने सलाम दी अपनी अम्मी को, कायनात को, सब सिस्टर्स को, और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। साइमा मीर कहती हैं सच्ची बताऊं साइमा मीर, तो मुझे पता ही नहीं है सब चीजों का, मुझे नहीं पता है कि क्या है, क्या चल रहा है ये। पूछ भी आप कैसे रही हैं। अच्छा उन्होंने कहा अलावा साइम अमीर बहुत शुक्रिया। हैप्पी गर्ल कहती है सिडो जानी, हाँ जी बताते हैं, रुको जरा सबर करो। और ये कहते हैं भाऊ कराची में बस गया हूँ भाई, टाइम नहीं मिलता, इतना बिजी हो गया हूँ, रात को 2 बजे घर जाता हूँ, अपना कारोबार लगा दिया है यहाँ पे, क्या बात है जी, क्या बात है, कारोबारी मानन जो इो कमाल आए वाकई, तो जिते वेंदा पांची मतलब जेको ना कारोबार के जमाए वेंदा। जयपाल भाई कहते हैं आप फाइन है सिस्टर जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फाइन शाइन, आप बताएं कैसे हैं। और कहते हैं कि हमारी मॉम पापा और सब कहते हैं वापस आओ, लेकिन मैं कराची में ओके हूँ। हाँ कराची में वैसे खुश रहें, एंजॉय करें। और ये हमारे साथ हैं, हेलो अदी जी, बाजी जी, सिस्टर जी एंड भाऊ। भाऊ तुम्हारा सब मैसेज पढ़ंदी वही आए, हाँ लगे तो तुम पांचा मैसेज बुधा को ना है।

0: ओके सो ही वाली कॉल बैठू था ही शायद प्रोग्राम जी लास्ट कॉल थी सगे थी सो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम मेरा मुस्कान चाल खुशियां
0: अल्हम्दुलिल्लाह केरे से सगर मौजूद आप
1: मां सखर मां शहर अली को मीरानी
0: ओके मीरानी भा खुश आयो
1: अल्हम्दुलिल्लाह दुआ है ओके छोटी पोटी है मैडम
0: जी जी बुधायो
1: करेंगे

0: ਵਿਚਨ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਤੇ ਫਿਰੰਦੋ ਵਤਾ ਸਾੜੇ ਛੱਡਿਓ ਲੁੱਖ
1: ਵਾਹ ਵਾਹ
0: ਫਿਰੀ ਤੇ ਦਿਲ ਜੋ ਪੱਕੋ ਆ ਜਾਂ ਅਸਲੀ ਆ ਕੋ ਰੁੱਖ
1: ਵਾਹ ਵਾਹ
0: ਅੱਖਿਓ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਤੇ ਕੈਸੇ ਢਾਡੀ ਚੁੱਕ
1: ਹਾਏ ਹਾਏ इजाजत वठण जो टाइम थी वो वरी सुबाने मुलाकात थी गाली सो अदे के अलविदा उन अलावा शायरी ढी भली बुधाए सो हाँ कॉलर चुप कर साइड कर असाने वन जो टाइम थी वाया बाबा वरी इंसला तां से मुलाकात जे कायो पंजे पजे वाले प्रोग्राम में थींदी आई जेके जेके मानो वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स सुजन या वरी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स सुजन इस्तेमाल कन पया त बुधायो बाबा तां केडो प्रोडक्ट इस्तेमाल कयो पया आई उन खां अलावा तमा जे करीबी जनरल स्टोर से नथा मिलन प्रोडक्ट त तमा पांजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराईंदा रहो बिल्कुल भाऊ पांच बजे भी आप लोगों के साथ साथ मुलाकात होगी पांच बजे मिलिएगा जरा आपको बताएंगे कौन सा प्रोग्राम है और मोहम्मद समान भाई आपका भी बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ अच्छा सा खालिद आपका भी बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ ऐसे के साथ सो मुकलानी नाही बाबू सिंह सलामत सलामत अल्लाह हाफिज बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर

नौरीन खान जे हक जे जंग खिलाफ़ बयान ते पीटीआई बानी ऐं संदसि कुटुंब पाकिस्तान खिलाफ़ प्रॉक्सीज़ करार। वफ़ाकी वज़ीर तारिक फज़ल चौधरी ऐं मुमलकती वज़ीर तलाल चौधरी जी ॻाल्हि ॿोल। तारिक फज़ल चौधरी चयो आहे त हक़ जी जंग बाबति नौरी नियाज़ीअ जो बयान अफ़सोसनाक ऐं मज़म्मत जोॻो आहे। हक़ जी जंग पाकिस्तान जी तारीख़ी कामयाबी आहे। बानी पीटीआई ऐं संदसि कुटुंब जो हदफ़ पाकिस्तान खे नुक़सान रसाइण आहे। नौरीन नियाज़ीअ जे बयान मां वाज़े थियो आहे त इहे पाकिस्तान ख़िलाफ़ प्रॉक्सीज़ आहिनि।

अमेरिकी फौज जा ईरान ते हमला। ईरान जे शहर से गाजियाबाद कश्म ऐं बंदर अब्बास ते धमाका। अमेरिकी फौज जे सेंट्रल कमांड जो चवण आहे त अठी रात में कयल हमला मुकमिल कया विया आहिनि। हमलनि में ईरानी फिज़ाई फौजी हंधनि जी बहरी सलाहियतनि मिज़ाइलनि ड्रोन मर्कज़नि खे निशानो बणायो। अमेरिका सॼी दुनिया में मौजूद पंहिंजे शहरनि लाइ सफ़री अलर्ट जारी करे छॾियो। विच ओभर जी सूरतहाल सबबि शहरी

अमेरिकी हमलनि जे जवाब में ईरान जाबी खिते में मौजूद अमेरिकी अॾनि ते हमला। ईरानी पासदार इनकलाब जो चवणु आहे त अमेरिकी फ़ौजी हदफ़नि खे निशानो बणायो आहे। ऑपरेशन लाइटिंग जी सोरे मरहले में कुवैत में ॿिनि अमेरिकी फ़ौजीअरनि खे निशानो बणायो आहे। देर कैंप में हिकु हथियारनि जी डिपो ऐं अली सालिम अॾे ते पेटिया रेडार खे निशानो बणायो। हमले में फिज़ाई निगरानीअ जे हिकु रेडार खे बि निशानो बणायो वियो।

ईरानी अमेरिकी दिफा निज़ाम के बेपार करे रहियो। उर्दन ते हमलन में अमेरिकी फौज जो वरो नुकसान करे विधो। अमेरिकी ए रूसी मीडिया जी रिपोर्ट। रूसी मीडिया चयो आहे त ईरान अमेरिकी दिफा निज़ाम पार कंदे हथन के निशानो बणायो। न्यूयॉर्क टाइम्स मूजिबि ईरान 17 जुलाई ते उर्दन में अमेरिकी फौज ते चौथो हमलो कयो। हमलन में केतिरा ई फौजी ज़ख़्मी थिया। अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स बि तबाह कया विया। उर्दन में ईरानी हमले में 2 अमेरिकी अहलकार मारजण ऐं 4 ज़ख़्मी थियण जी तस्दीक। अमेरिकी सेंट्रल कमांड मूजिबि 17 जुलाई ते उर्दन में ईरानी हमले में 2 अमेरिकी अहलकार मारिजी विया। ज़ख़्मी थियल 4 अहलकारनि खे तिबी इमदाद ॾियण खां पोइ इस्पताल मां डिस्चार्ज कयो वियो। ईरानी हमलनि ख़िलाफ़ दिफ़ाई कार्रवाई दौरान हिकु अमेरिकी अहलकार गुम आहे। वारसनि खे इतलाह ॾियण खां पोइ मारिजी वियल अहलकारनि जी सुञाणप ज़ाहिर कई वेंदी।

ईरान अमेरिका जंग शिदत इख़्तियार करे वही। अमेरिकी सदर पेंटागोन के पूरी ताकत से ईरान ते हमलन जो हुकुम दई छो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है तो उर्दन में फौजन की मौत से तमाम घणो दुख थो है। फौजन की कुर्बानी से अमेरिका जो अजम मजबूत थो है। ईरान डील से अमल न पो करे तो अमेरिका के भी फिक्र ना है।

0: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनर्जेटिक क्रीम,
0: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
1: ये मासर क्रीम मुतासर जगह पर तेजी से जज्ब होकर
0: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
1: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
0: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
1: गर्दन और कंधों के दर्द
0: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
1: सिर्फ मुतासर जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
0: उमरा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
1: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम,

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर टोपियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
0: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अजरक के रंगों से रंगी,
0: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
0: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: झुर्रियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: आप सुन रहे हैं
4: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
1: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
0: अब दर्द को कहें अलविदा
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
0: जी हाँ,
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: ये ऑइंटमेंट
0: मुतासर जगह पर आसानी से जज्ब होकर
1: दर्द, सोजिश
0: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
1: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
0: गर्दन और कमर की तकलीफ,
1: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
0: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
0: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
4: सुनते रहो GFM 90.8।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: सिंध के माथे का झूमर
4: GFM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज़।

ईरानी अमेरिकी दिफा निज़ाम के बेपार करे रवयो उर्दन ते हमलन में अमेरिकी फौज जो वड़ो नुकसान करे विधो अमेरिकी ए रूसी मीडिया जी रिपोर्ट रूसी मीडिया चयो आहे ते ईरान अमेरिकी दिफा निज़ाम पार कंदे हथफन के निशानो बणायो न्यूयॉर्क टाइम्स मौजूब ईरान 17 जुलाई ते उर्दन में अमेरिकी फौज ते चौथो हमलो कयो हमलन में केतरा ही फौजी जख्मी थिया अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स भी तबाह कया विया उर्दन में ईरानी हमले में 2 अमेरिकी अहलकार मारजण ऐं 4 जख्मी थियण जी तस्दीक अमेरिकी सेंट्रल कमांड मूजिब 17 जुलाई ते उर्दन में ईरानी हमले में 2 अमेरिकी अहलकार मारिजी विया जख़्मी थियल 4 अहलकारनि खे तिबी इमदाद ॾियण खां पोइ इस्पताल मां डिस्चार्ज कयो वियो ईरानी हमलनि ख़िलाफ़ दिफ़ाई कार्रवाई दौरान हिकु अमेरिकी अहलकार गुम आहे वारसनि खे इतलाह ॾियण खां पोइ मारिजी वियल अहलकारनि जी सुञाणप ज़ाहिर कई वेंदी

ईरान अमेरिका जंग शिदत इख़्तियार करे वही। अमेरिकी सदर पेंटागोन के पूरी ताकत से ईरान ते हमलन जो हुकुम दई छो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है तो उर्दन में फौजन की मौत से तमाम घणो दुख थो है। फौजन की कुर्बानी से अमेरिका जो अजम मजबूत थो है। ईरान डील से अमल न पो करे तो अमेरिका के भी फिक्र ना है।

0: It's 5:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli glow har niya josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी, हाने पहिजी स्किन खेडियो एक नौ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम। अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट ए ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए। वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जरूरी थोड़ी है कि आप जिस चीज में अच्छे हो उसी को अपना करियर बनाएं। I realized I was made for music.
2: जब तक मैं जिंदा हूँ तो वो सब कुछ करोगे और सुनोगे जो मैं चाहूंगा।

0: परवरिश देखिए हर पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
2: ढाडू सुठो
1: जीए FM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
5: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।

ईरानी अमरीकी दिफाई निज़ाम के भी पार करे वो उर्दन से हमलन में अमरीकी फौज जो वो नुकसान अमरीकी ए रूसी मीडिया की रिपोर्ट मूजिब ईरान अमरीकी दिफाई निज़ाम पार कंदे हदफन के निशानो बनाया न्यूयॉर्क टाइम्स मूजिब ईरान 17 जुलाई से उर्दन में अमरीकी फौज से चौथों हमलों कर हमलन में केतरा ही फौजी जख्मी थे अमरीकी हेलीकॉप्टर्स पे तबाह किया गया

0: फौजियुनि जी कुर्बानी सां अमेरिका जो अज़म वधीक मज़बूत थियो. ईरान डील ते अमल न पियो करे त अमेरिका खे बि फिक्र नाहे. पीटीआई बानीअ जी भेण नूरैन ख़ान पारां हक वारी जंग ख़िलाफ़ बयान. पीटीआई बानी ऐं संदसि कुटुंब पाकिस्तान ख़िलाफ़ प्रॉक्सीस करार. वफ़ाक़ी वज़ीर तारिक फज़ल चौधरी ऐं ममलिकती वज़ीर तलाल चौधरी जी ॻाल्हि ॿोल. तारिक फज़ल चौधरी चयो त हक जी जंग बाबति नूरैन नियाज़ीअ जो बयानु अफ़सोसनाक ऐं मज़मत जोॻो आहे. हक जी जंग पाकिस्तान जी तारीख़ी कामयाबी आहे. बानी पीटीआई ऐं संदसि कुटुंब जो हदफ़ पाकिस्तान खे नुक़सान रसाइणु आहे. नूरैन नियाज़ीअ जे बयान मां वाज़े थियो त उहे पाकिस्तान ख़िलाफ़ प्रॉक्सीज़ आहिनि. अताद तारण लाहौर में ख़िताब कंदे चयो त नूरैन नियाज़ीअ जी बयान ते अवाम में कावड़ आहे. भारतीय मीडिया खेसि वॾी कवरेज ॾिनी. हुननि जी सियासत दफ़न थी वई आहे. कश्मीर में हिजरत करे आयलनि जूं सीटूं केर बि ख़तमु नथो करे सघे.
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
2: यार कुछ डीन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो.
3: त पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करी?
2: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
3: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी.
2: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ?
3: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे.
2: इस्तेमाल कीअं कजे?
3: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसासु हासिल करियो. जी हा, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम. अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो. फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट. सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है.
4: सुनते रहो GFM 90.8.

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: यार कुछ डियन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो
2: त पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो न तो करी
1: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा
2: बिल्कुल फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थेल हंदते आसानी सा जजब थी सूर आई सोडियम आराम पहुंचाने में मदद दे थी
1: सिर्फ चेल ऐ सूर लाए
2: ना दा आसाबन जो सूर जोड़न जो सूर कंध आई चेल जी तकलीफ सट धक लगन पुराने जख्म जे सूर आई चमड़ी जे जलन लाए भी फायदेमंद आहे
1: इस्तेमाल किए कजे
2: मुतासिर थेल हंदते डी में ब खां टे भेरा नरमी सा लगायो आई आराम जो एहसास हासिल करियो जी हाँ फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट सूर खां आराम हर रोज हर कदम अड़ी वेजे स्टोर ता नालो वठी खरीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट सिंध के माथे का झूमर
3: जी एफ एम 88 नेटवर्क
4: सिंध की आवाज

दोपहर जिंदगी की लहर जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
0: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
0: GFM 88 नेटवर्क।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

ईरानी अमरीकी दिफाई निज़ाम के भी पार कर उर्दन से हमलन में अमरीकी फौज जो वो नुकसान। अमरीकी ए रूसी मीडिया की रिपोर्ट मूजिब ईरान अमरीकी दिफाई निज़ाम पार कदे हदफन के निशानों बनाया। न्यूयॉर्क टाइम्स मूजिब ईरान 17 जुलाई से उर्दन में अमरीकी फौज से चौथों हमलों कर हमलन में केतरा ही फौजी जख्मी थे। अमरीकी हेलीकॉप्टर्स पे तबाह किया गया।

DGISPR जी समर कैंप 2026 में शरीक शागिर्दन सां खास वेक पूरे मुल्क जे 18 खां वधीक शहरनि जा 9 ऐं 12 जमात जा 4000 शागिर्द कैंप में शरीक। DGISPR खास वेक में क़ौमी सलामती ऐं दहशतगर्दी जे चैलेंजेस ते तफ़सीली रोशनी विधी। शागिर्दनि जो चवण हो त असांखे मुल्क खे पेश ईंदड़ अंदरूनी ऐं परॾेही सेक्रेटरी ख़ारिज जे नापाक आगाह कयो वियो। हिन दौर में ग़लति मालूमात ऐं प्रोपेगेंडा तेज़ीअ सां पखिड़जण बाबति आगाही ज़रूरी आहे। आहे ऐं हमेशा रहंदी। सिंध में शाहराहुनि जी तामीर ऐं बहाली लाइ वफ़ाक़ी सरकार फंड फराहम कया आहिनि। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ऐं मुल्क वज़ीर कीअलदास कोहिस्तानी झोक शरीफ़ में मरहूम लाल बख़्श जतोई जे वारसनि सां ताज़ियत बाद ॻाल्हि ॿोल कंदे चयो त वफ़ाक़ अवामी भलाई लाइ सूबनि सां सहकार जारी रखंदो। सिजावल में पाणी जी खोट ते लाॻापियल अख़्तियारनि सां राब्तो आहे। कीअलदास कोहिस्तानी चयो त प्रिया कुमारी रुगो राजकुमार जी न पर 6 करोड़ सिंधियुनि जी नियाणी आहे। सभु प्रिया सां प्यार कनि था ऐं बाज़ाबी लाइ परेशान आहिनि।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो GFM 90.8।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुलु, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो। फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।

लहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 8 PM. This time check is brought to you by
1: Fakiri Analgesic Cream. दर्द, सोजन, वरम फौरी खत्म. आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: बख्श नकबो गिलगित बल्तिस्तान जियां कश्मीरन जे हक लाए जदोजहद करे रहा आयूं. सियासतदानन जो कम अवाम जो आवाज़ बणजण आहे. आज़ाद कश्मीर जी अवाम के हक हाकमियत, हक मिल्कियत, हक रोज़गार ॾियारींदासीं. पीटीआई बानीअ जी भेण नूरीन खान पारां हक वारी जंग ख़िलाफ़

चिंदा राउंड अप में अज अवां बुधी सकंदा सिंधवासियुनि जा एहतजाज ऐं हुकूमत जा एतराज़ नज़र अंदाज़। पंजाब तकरारी जलालपुर कैनाल मुकमल करे वहाए छॾियो। 1350 क्यूसिक पाणी छोड़। लेडी हेल्थ वर्कर्स जी निचकारी ऐं बजट में 75% कटौती रद्द। तहरीक जो ऐलान। सिंध जे 275,000 मुस्तहक घराणनि में मुफ़्त सोलर सिस्टम विरिहाइण ऐं लॻाए ॾियण जो हुकुम। जल्द अमल करण जूं हिदायतूं। सिंध में शागिर्दनि जी दाख़िला खे डिजिटलाइज करण जो फ़ैसिलो। हर शागिर्द जे लाइ मुनफ़रद दाख़िला IT तयारु। सिंध में पेट्रोल पंपनि जी निगरानी कमिश्नर ऐं पुलिस हवाले। इजलास में फ़ैसिलो। सिंध ऐं बलोचिस्तान जे सवें आबादकारनि जो पाणी खोड़ ख़िलाफ़ सखर में धरणो। पाणी चोरी नामंजूर ऐं स्पेशल रिपोर्ट बि अवां ॿुधी सघंदा। सिंध में जाली दवाउनि जो मौत वारो कारोबारु।

पंजाब जे आपाशी खाते नव ठहियल जलालपुर केनाल सतन ॾींहनि जे आज़माइशी टेस्ट खातिर वहाए छॾियो आहे, जितां 16 जुलाई खां 23 जुलाई ताईं पाणी खयो वेंदो। 117 किलोमीटर उन ढिघे केनाल में खुशाब रसूल हेडवर्क वटां 1350 क्यूसिक पाणी छॾियो वियो आहे। झेलम नदीअ में मंगला डेम मां आयल उन पाणीअ खे वहाइण खां 3 ॾींहं अॻु सीजी केनाल जी खणत वधाए 10,000 क्यूसिक कई वई ऐं सीजीअ जे मथां वरी झेलम नदीअ जे पाणी उन नए जलालपुर केनाल खे ॾिनो वियो आहे। जलालपुर केनाल जे नेटवर्क मां 23 डिस्ट्रीब्यूटरियूं ऐं 10 माइनर निकितल आहिनि। केनाल जी कमांड एरिया 1,74,000 एकड़ रखी वई आहे। 117 किलोमीटर ढिघो उहो केनाल पंजाब जे झेलम ऐं खुशाब ज़िलनि जे ख़रीफ़ मुंद में ज़मीन आबाद करण जे लाइ ठाहियो वियो आहे। 0.25 लख एकड़ ज़मीन खां अलावा वधीक 10,000 एकड़ ज़मीन खे पोख्य लाइक बणायो वेंदो। 2,000 एकड़नि ते जदीद आपाशी जो निज़ाम हूंदो। 18 हंधनि ते बोड खां बचाव जे लाइ बंदि हूंदा। 20 हंधनि ते पाणी गॾु करण जा तलाव ऐं पंपिंग स्टेशन हूंदियूं। 26 हंधनि ते पीअण लाइ पाणी जा 17 आउटलेट हूंदा। 1941 एकड़नि ते ड्रिप इरीगेशन हूंदी। पंजाब जे आपाशी खाते मूजिबि उहो केनाल रुगो ख़रीफ़ जे फसल जे लाहे ठाहियो वियो आहे। ॿिए पासे सिध जे पाणी माहिर जो ख़दशो आहे त झेलम नदीअ मां उन केनाल खे पाणी ॾियण बाद सिंधूअ जो पाणी सीजी वसीले झेलम जे कमांड वारनि हेठनि इलाइक़नि जी घुर्ज पूरी करण जे लाइ खयो वेंदो। होॾां टीपी केनाल मां बि खणत 10,727 क्यूसिक कई वई आहे। यादि रहे त 2021 में सिंध पारां उन केनाल जी अॾावत एतिराज़ वारींदे उनखे 1991 वारे पाणी ठाह जी भञकड़ी करार ॾिनो वियो। होॾां जुलाई जे 3 हफ़्ते ताईं ख़रीफ़ मुंद हूंदी। कोटड़ी जी डाउन स्ट्रीम में 100 क्यूसिक पाणी बि नाहे छॾियो वियो। आल लेडी हेल्थ वर्कर्स यूनियन जे चेयरपर्सन बुशरा आरई चयो आहे त लेडी हेल्थ वर्कर्स जी जिदोजहद रुगो रोज़गार न पर सिंध जे आवाम जे बुनियादी सिहत जे हक़ जे तहफ़ जे लाइ आहे। काल्ह हिकिड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कंदे हुन चयो त सिंध हुकूमत जे पॉलिसियुनि सबबि लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम खे आहिस्ते आहिस्ते ख़तमु करणु, निजी शोबे हवाले करणु, प्राइवेटाइज़ेशन या आउटसोर्सिंग ॾांहुं धिकियो पियो वञे, जेके अवामी सिहत जे लाइ इंतिहाई ख़तरनाक आहे। हुन इल्ज़ाम हयो त प्रोग्राम जे ऑपरेशनल बजट में 75% कटौती कई वई आहे, जंहिं सबबि दवाउनि, तिबी सामान, निगरानी ऐं ॿियनि बुनियादी सहूलियतुनि जी फराहमी सख़्त मुतासिर थी आहे। हुन वधीक चयो त प्रोग्राम जो नालो सरकारी बजट दस्तावेज़नि मां बि ख़तमु कयो वियो आहे। हुन चयो त लेडी हेल्थ वर्कर्स निज़ाम कमज़ोर थियो त बहराड़ी ऐं पुठिते पियल इलाइक़नि में माउ ऐं ॿार जी सिहत, वैक्सीनेशन, पोलियो मुहिम ऐं ॿियनि बुनियादी सिहत जी ख़िदमतुनि खे नुक़सान पहुचंदो। हुन मुतालबो कयो त ऑपरेशनल बजट में कयल 75% कटौती वापसि वठी महांगाई जे तनासुब सां बजट में वाध कई वञे, प्रोग्राम जी सुञाणप, नाले ऐं बुनियादी ढांचे खे कानूनी तहफ़ ॾिनो वञे, कंहिं बि क़िस्म जी निचकारी, आउटसोर्सिंग या इंतिज़ामी तब्दीलीअ खां अॻु लेडी हेल्थ वर्कर्स जी चूंडियल क़यादत सां मुशावरत कई वञे। हुन ख़बरदार कयो त सननि जाइज़ मुतालबा मंज़ूर न कया विया त सॼी सिंध में एहतजाजी तहरीक शुरू कई वेंदी। आईनी ऐं कानूनी वेड़ जे लाइ सुप्रीम कोर्ट सां राब्तो कयो वेंदो। सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह तवान ऐं खाते खे हिदायत कई आहे त सॼे सूबे में सोलर होम सिस्टम किट्स जी विर्छ ऐं इंस्टॉलेशन वारे कम खे वधीक तेज़ कयो वञे। काल्ह वज़ीर आला हाउस में 18.206 अरब रुपयनि जे लागत वारे सोलर होम सिस्टम प्रोजेक्ट में अॻभराई बाबति इजलास जी सदारत कंदे वज़ीर आला चयो त पीपल्स पार्टीअ जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारीअ जे हिदायतुनि ते शुरू कयल हिन प्रोजेक्ट जो मक़सदु सॼे सिंध में 2,75,000 ऑफ ग्रिड ऐं प्रोटेक्टेड ऑन ग्रिड मुस्तहक घरनि खे मुफ़्त सोलर बिजली फराहम करणो आहे। इजलास खे ॿुधायो वियो त तवानाई खातो सालियाने तरक़ियाती प्रोग्राम ज़रिए 18.206 अरब रुपयनि जी लागत सां ग़रीब ख़ानदाननि जे लाइ सोलर होम सिस्टम ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड प्रोजेक्ट ते अमल करे रहियो आहे। हर मुस्तहक घर खे मुकमल सोलर होम सिस्टम ॾिनो वेंदो, जंहिंमें 180 वाट जो सोलर पैनल, लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी, सेंट्रल कंट्रोल यूनिट चार्ज कंट्रोलर ऐं मोबाइल चार्जिंग जी सहूलत, 25 वाट जो DC पखो ऐं 5 वाट जूं 3 LED लाइट्स शामिल आहिनि। उन ई प्रोजेक्ट मां 2,75,000 घरनि खे फ़ाइदो थींदो। इजलास खे ॿुधायो वियो त सिंध जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में 15,000 खां वधीक सोलर होम सिस्टम किट्स विरिहायूं ऐं लॻायूं वियूं आहिनि। अप्रैल 2025 में शुरू थियल मनसूबो जून 2027 ताईं मुकमल थियण जो इम्कान आहे। सिंध हुकूमत पारां सरकारी स्कूलनि में शागिर्दनि जे दाख़िला वारे निज़ाम खे डिजिटलाइज़ करण जो फ़ैसिलो, हर शागिर्द जे लाइ मुनफ़रद दाख़िला ID तयारु कई वेंदी।
जंहिंखे पे फार्म सां ॻंढियो वेंदो। उन हवाले सां तालीम वारे वज़ीर सरदार शाह जी सदारत हेठि नादरा अख़्तियारनि सां इजलास कयो वियो। उन मौक़े ते सूबाई वज़ीर सरदार शाह चयो त सिंध जे स्कूलनि में टेक्नोलॉजीअ जे इस्तेमाल खे वधीक वसत ॾिनी पई वञे। उस्तादनि ऐं शागिर्दनि जी हाज़िरीअ वारे निज़ाम आख़िरी मरहले में आहे। हुन चयो त हाणे हर शागिर्द जो दाख़िला निज़ाम नादरा जे तस्दीक सां गॾु डिजिटल तौर ते महफ़ूज़ हूंदो। सिंध जे कमिश्नरनि ऐं पुलिस खे पेट्रोल जे ज़ख़ीरा आंदोज़ीअ जी निगरानी ऐं कार्रवाई जी हिदायत उन ॾसमी चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह जे सदारत हेठि थियल इजलास में सूबे अंदरि ॿारण फ्यूल जो सूरत हाल जो जाइज़ो वरितो वियो। इजलास खे ॿुधायो वियो त सिंध जे चइनि ज़िलनि में ऑयल मार्केटिंग कंपनियुनि जा 34 ऑयल डिपो ऐं 30 ज़िलनि में 2136 पेट्रोल पंप ऐं रिटेल आउट आहिनि। ओगरा कराची पारां तेल जे ज़ख़ीरा आंदोज़ी रोकण जे लाइ ख़ुसूसी इंस्पेक्शन टीमूं जोड़ियूं वयूं आहिनि। चीफ सेक्रेटरी कमिश्नरनि ऐं पुलिस अख़्तियारनि खे ओगरा जी इंस्पेक्शन टीमुनि सां सहकार जी हिदायत कंदे चयो त कंहिं बि ज़िले में तेल जी हथरादू खोट या ज़ख़ीरा आंदोज़ी बर्दाश्त न कबी। हुननि कमिश्नरनि डिप्टी कमिश्नरनि ऐं पुलिस अख़्तियारनि खे तेल सूरत हाल जी मुसलसल मॉनिटरिंग ऐं रोज़ानो बुनियाद ते रिपोर्टिंग जो हुकुम ॾिनो। हुन वधीक हिदायत कई त समूरनि ऑयल डिपुअनि ऐं पेट्रोल पंपनि ते मौजूदु स्टॉक जी बाक़ाइदगीअ सां निगरानी कई वञे ऐं ओगरा ऑयल कंपनियुनि तोड़े ज़िले इंतिज़ामिया जे विच में राब्तो क़ाइमु रखियो वञे त जीअं तेल सप्लाईअ में का बि रुकावट पेश न अचे। बलोचिस्तान ऐं सिंध जे साॼे पासे खां कीर्थर केनाल खे पाणी ॾियो सभई ज़मीनदारनि ऐं आबादगार उस्ता मोहम्मद खां रैलीअ जी सूरत में सखर पहुची विया। एहतजाजी मुज़ाहरे बाद धरणो पुलिस खेनि ग्लोब चौक वटि रोके वरितो। राइट बैंक केनाल कीर्थर में पाणीअ जी शदीद खोट ख़िलाफ़ सिंध बलोचिस्तान हारी ऐं ज़मीनदार इतिहाद जे अॻवान मीर हसन ख़ान शैलाणी ऐं ॿियनि जी अॻवाणी में सवे ज़मीनदार ऐं आबादगार सखर बिरार ते धरणो हणण जे लाइ पहुची विया। सखर पुलिस खेनि ग्लोब चौक वटि रोके वरितो, जिते आबादगार धरणो हणी वेही रहिया। एहतजाज दौरान ट्रैफिक जी अच वञ मुअतल थी वई। आबादगार पंहिंजे हक़नि जे लाइ ज़ोरदार नारेबाज़ी कई। उन मौक़े ते अॻवाणनि चयो त सखर बैराज ते पाणी मौजूदु हुजण बावजूद खीरथर केनाल ऐं दादू केनाल में पाणी न छॾियो पियो वञे। पाणीअ जी शदीद खोट सबबि असांजूं लखे एकड़ ज़रई ज़मीनूं बंजर बणिजी वियूं आहिनि। पीअण जे लाइ पाणी बि मुयसरु न आहे। माल मता उन सबबि मरी रहियो आहे। ज़मीनूं सुकी बंजर बणिजी चुकियूं आहिनि ऐं माण्हू मजबूर थी लॾ पलाण करे रहिया आहिनि। हिननि इल्ज़ाम हयो त सिंधु हुकूमत ॼाणी वाणी बलोचिस्तान जे हिसे जो पाणी रोके रही आहे, जंहिं सबबि लखे एकड़ ज़मीनूं सुकी ऐं गैराबाद थी वियूं आहिनि। अॻवाणनि ख़बरदार कयो त जेकॾहिं सदन जाइज़ मुतालबा मंज़ूरु न कया विया त धरणो ख़तमु न कयो वेंदो ऐं जेसीं ताईं खेनि पंहिंजे हिसे जो पाणी न मिलंदो तेसीं ताईं एहतजाज जारी रहंदो। बलोचिस्तान जे सूबाई वज़ीरनि शादी ख़ान उमराणी, मोहम्मद ख़ान लहड़ी ऐं सलीम ख़ान खोसो सखर में आबादगारनि जे धरणे में पहुची साणनि ॻाल्हियूं कयूं ऐं ख़ातिरी कराई त ॿिनि ॾींहनि अंदरि सदन पाणीअ जो मसइलो हल कयो वेंदो। उन खां सवाइ चीफ इंजीनियर गुडू बैराज सैद सरदार शाह ऐं असिस्टेंट कमिश्नर मैडम बुशरा मंसूर पिण आबादगारनि खे ख़ातिरी कराइण जी कोशिशि कई त ॿिनि ॾींहनि अंदरि संदन पाणीअ जो मसइलो हल कयो वेंदो। पर आबादगारनि कामोरनि ऐं बलोचिस्तान जे सूबाई वज़ीरनि खे कुतो जवाबु ॾिनो ऐं चयो त जेसीं ताईं संदन मसइलो हल न कयो वेंदो तेसीं ताईं धरणो जारी रहंदो।

पेशा है स्पेशल रिपोर्ट। सिंध जे ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी पारां मुख़्तलिफ़ एलोपैथिक हर्बल दवाउनि ऐं सिरंजुनि जा 79 नमूना गैर मयारी ऐं जाली करार ॾियण खां पोइ सूबे में दवाउनि जे मयार ऐं सिहत वारे निज़ाम बाबति ॻणती वधी वई आहे। माहिरनि जो चवणु आहे त हीउ रुॻो चंद दवाउनि जो मसइलो न आहे पर सिहत जी निगरानीअ वारे निज़ाम ते हिकु वॾो सुवाल आहे। रिपोर्ट मूजिबि असुलु मामिलो रुॻो गैर मयारी दवाउनि जी निशानदही न पर उहो आहे त उहे दवाऊं मार्केट ताईं कीअं पहुतियूं, उन्हनि खे तयार कंदड़ कंपनियुनि खे इजाज़त कंहिं ॾिनी ऐं लाॻापियल इदारनि तर्फ़ां वक़्त सिर कार्रवाई छो न कई वई। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि ऐं ज़िलनि में जाली ऐं गैर मयारी दवाउनि जे विकिरे बाबति अॻु बि शिकायतूं साम्हूं ईंदियूं रहियूं आहिनि। सिहत जे शोबे सां लाॻापियल हल्कनि जो चवणु आहे त जेकॾहिं निगरानीअ जो निज़ाम मौसरु हुजे त अहिड़ियूं दवाऊं मार्केट ताईं पहुची न सघंदियूं। माहिरनि मूजिबि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ऐं सिंध जे सिहत खाते जी ज़िमेवारी आहे त दवा साज़ कंपनियुनि, मेडिकल स्टोरनि ऐं सप्लाई चेन जे सख़्तु निगरानी कनि जीअं अवाम ताईं महफ़ूज़ ऐं मयारी दवाऊं पहुचनि। ॿिए तरफ़ सिहत जे शोबे में उहो बि बहस जारी आहे त कुझु दवा साज़ कंपनियुनि ऐं मेडिकल स्टोरनि ख़िलाफ़ मालीअ में बि कार्रवायूं थियूं पर मुस्तक़िल ऐं असराइती निगरानी न थियण सबबि मसइलो ख़तमु न थी सघियो। कुझु माहिरनि जो ख़्यालु आहे त जेकॾहिं ज़ाब्तनि ते सख़्तीअ सां अमल थिए ऐं ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ बिना इम्तियाज़ कार्रवाई कई वञे त जाली दवाउनि जो कारोबार ते ज़ाब्तो आणे सघिजे थो। सिहत जे माहिरनि जो उहो बि चवणु आहे त जाली या गैर मयारी दवाउनि जो सभ खां वॾो नुक़सानु आम मरीज़ खे थिए थो जेको इलाज जी उमेद सां दवा ख़रीद करे थो पर खेन घुर्बल फ़ाइदो नथो मिले ऐं कॾहिं कॾहिं संदनि सिहत खे वधीक ख़तरो बि पैदा थी सघे थो। हाणे अवाम ऐं सिहत सां लाॻापियल हल्का मुतालबो करे रहिया आहिनि त ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीअ जी रिपोर्ट जे बुनियाद ते जाली ऐं गैर मयारी दवाऊं ठाहींदड़ कंपनियुनि ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कई वञे, ज़िमेवार आफ़ीसरनि ऐं लाॻापियल अमले जे एहतसाब कयो वञे, गैर मयारी दवाऊं विकिरो कंदड़ मेडिकल स्टोरनि ख़िलाफ़ सख़्त कदम खयां वञनि, सूबे में दवाउनि जे मयार जी निगरानीअ जो निज़ाम वधीक मज़बूत बणायो वञे। सिहत जे शोबे जे माहिरनि जो उहो बि चवणु आहे त जेकॾहिं रिपोर्टुनि ताईं ई कार्रवाई महदूद रही ऐं ज़िमेवारनि खे कानून जे कचहरे में न आंदो वियो त अवाम जो सिहत वारो निज़ाम ते एतमाद वधीक मुतासिर थींदो। सिंध में महफ़ूज़ मयारी ऐं मौसर दवाउनि जी फराहमी यकीनी बनाइण जे लाइ शफ़ाफ़ एहतसाब ऐं सख़्त निगरानीअ खे वक़्त जी अहम ज़रूरत करार ॾिनो पियो वञे।

0: एलोवेरा फैन वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

अचंद राउंड अप में अज अहां बुधी सकंदा सिंधवासियुनि जा एहतजाज ऐं हुकूमत जा एतराज़ नज़रअंदाज़ पंजाब तकरारी जलालपुर कैनाल मुकमल करे वहाए छॾियो 1350 क्यूसिक पाणी छोड़ लेडी हेल्थ वर्कर्स जी निचकारी ऐं बजट में 75% कटौती रद्द तहरीक जो ऐलान सिंध जे 275,000 मुस्तहक घराणनि में मुफ़्त सोलर सिस्टम विरिहाइण ऐं लॻाए ॾियण जो हुकुम जल्द अमल करण जूं हिदायतूं सिंध में शागिर्दनि जी दाख़िला खे डिजिटलाइज करण जो फ़ैसिलो हर शागिर्द जे लाइ मुनफ़रद दाख़िला आई टी तयारु सिंध में पेट्रोल पंपनि जी निगरानी कमिश्नर ऐं पुलिस हवाले इजलास में फ़ैसिलो सिंध ऐं बलोचिस्तान जे सवें आबादकारनि जो पाणी खोड़ ख़िलाफ़ सखर में धरणो पाणी चोरी नामंज़ूर ऐं स्पेशल रिपोर्ट में अवां ॿुधी सघंदा सिंध में जाली दवाउनि जो मौत वारो कारोबार 79 नमूना नाकाम ज़िमेवार केरु पंजाब जे आपाशी खाते नओं ठहियल जलालपुर कैनाल 7 ॾींहनि जे आज़माइशी टेस्ट ख़ातिर वहाए छॾियो आहे पाणी खयो वेंदो 117 किलोमीटर उन डिघे कैनाल में खुशाब रसूल हेडवर्क्स वटां 1350 क्यूसिक पाणी छॾियो वियो आहे झेलम नदीअ में मंगला डेम मां आयल उन पाणीअ खे वहाइण खां 3 ॾींहं अॻु सी जी कैनाल जी खणत वधाए 10,000 क्यूसिक कई वई ऐं सी जीअ जे मथां वरी झेलम नदीअ जे पाणी उन नए जलालपुर कैनाल खे ॾिनो वियो आहे जलालपुर कैनाल जे नेटवर्क मां 23 डिस्ट्रीब्यूटरियूं ऐं 10 माइनर निकितल आहिनि कैनाल जी कमांड एरिया 1,74,000 एकड़ रखी वई आहे 117 किलोमीटर डिघो उहो कैनाल पंजाब जे झेलम ऐं खुशाब ज़िलनि जे ख़रीफ़ मुंद में ज़मीन आबाद करण जे लाइ ठाहियो वियो आहे 4.25 लख एकड़ ज़मीन खां अलावा वधीक 10,000 एकड़ ज़मीन खे पोखे लाइ बणायो वेंदो 2,000 एकड़नि ते जदीद आपाशी जो निज़ाम हूंदो 18 हंधनि ते बोड खां बचाव जे लाइ बंदि हूंदा 20 हंधनि ते पाणी गॾु करण जा तलाउ ऐं पंपिंग स्टेशन हूंदियूं 26 हंधनि ते पीअण लाइ पाणी जा 17 आउटलेट हूंदा 1941 एकड़नि ते ड्रिप इरीगेशन हूंदी पंजाब जे आपाशी खाते मूजिबि उहो कैनाल रुगो ख़रीफ़ जे फसल जे लाइ ठाहियो वियो आहे ॿिए पासे सिंध जे पाणी माहिर जो ख़दशो आहे त झेलम नदीअ मां उन कैनाल खे पाणी ॾियण बाद सिंधुअ जो पाणी सी जी वसीले झेलम जे कमांड वारनि हेठनि इलाइक़नि जी घुर्ज पूरी करण जे लाइ खयो वेंदो होॾां टीपी कैनाल मां बि खणत 10,727 क्यूसिक कई वई आहे यादि रहे त 2021 में सिंध पारां उन कैनाल जी अॾावत एतिराज़ वारी दे उनखे 1991 वारे पाणी ठाह जी भञकड़ी करार ॾिनो वियो होॾां जुलाई जे 3 हफ़्ते ताईं ख़रीफ़ मुंद हूंदी कोटड़ी जे डाउन स्ट्रीम में 100 क्यूसिक पाणी बि नाहे छॾियो वियो आल लेडी हेल्थ वर्कर्स यूनियन जे चेयरपर्सन बुशरा आरई चयो आहे त लेडी हेल्थ वर्कर्स जी जिदोजहद रुगो रोज़गार न पर सिंध जे आवाम जे बुनियादी सिहत जे हक़ जे तहफ़ुज़ जे लाइ आहे काल्ह हिकिड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस खे ख़िताबु कंदे हुन चयो त सिंध हुकूमत जे पॉलिसियुनि सबबि लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम खे आहिस्ते आहिस्ते ख़तमु करणु निजी शोबे हवाले करणु प्राइवेटाइज़ेशन या आउटसोर्सिंग ॾांहुं धिकियो पियो वञे जेके अवामी सिहत जे लाइ इंतिहाई ख़तरनाक आहे हुन इल्ज़ाम हयो त प्रोग्राम जे ऑपरेशनल बजट में 75% कटौती कई वई आहे जंहिं सबबि दवाउनि

पलाण करे रहिया आहिनि। हिननि इल्ज़ाम हयो त सिंधु हुकूमत जाणी वाणी बलोचिस्तान जे हिसे जो पाणी रोके रही आहे, जंहिं सबबि लखें एकड़ ज़मीनूं सुकी ऐं गैराबाद थी वियूं आहिनि। अॻवाननि ख़बरदार कयो त जेकॾहिं सदन जाइज़ मुतालबा मंज़ूर न कया विया त धरणो ख़तमु न कयो वेंदो ऐं जेसीं ताईं खेनि पंहिंजे हिसे जो पाणी न मिलंदो तेसीं ताईं एहतजाज जारी रहंदो। बलोचिस्तान जे सूबाई वज़ीरनि शादी ख़ान उमराणी, मोहम्मद ख़ान लहड़ी ऐं सलीम ख़ान खोसो सखर में आबादगारनि जे धरणे में पहुची साणनि ॻाल्हियूं कयूं ऐं ख़ातिरी कराई त ॿिनि ॾींहनि अंदरि सदन पाणीअ जो मसइलो हल कयो वेंदो। उन खां सवाइ चीफ इंजीनियर गुडू विराज सैद सरदार शाह ऐं असिस्टेंट कमिश्नर मैडम बुशरा मंसूर पिणु आबादगारनि खे ख़ातिरी कराइण जी कोशिशि कई त ॿिनि ॾींहनि अंदरि संदन पाणीअ जो मसइलो हल कयो वेंदो, पर आबादगारनि कामोरनि ऐं बलोचिस्तान जे सूबाई वज़ीरनि खे कुतो जवाबु ॾिनो ऐं चयो त जेसीं ताईं संदन मसइलो हल न कयो वेंदो तेसीं ताईं धरणो जारी रहंदो।

पेशा है स्पेशल रिपोर्ट। सिंध जे ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी पारां मुख़्तलिफ़ एलोपैथिक हर्बल दवाउनि ऐं सिरंजनि जा 79 नमूना गैर मयारी ऐं जाली करार ॾियण खां पोइ सूबे में दवाउनि जे मयार ऐं सिहत वारे निज़ाम बाबति ॻणिती वधी वई आहे। माहिरनि जो चवणु आहे त हीउ रुॻो चंद दवाउनि जो मसलो न आहे, पर सिहत जी निगरानी वारे निज़ाम ते हिकु वॾो सवाल आहे। रिपोर्ट मूजिबि असल मामिलो रुॻो गैर मयारी दवाउनि जी निशानदही न पर उहो आहे त उहे दवाऊं मार्केट ताईं कीअं पहुतियूं, उन्हनि खे तयारु कंदड़ कंपनियुनि खे इजाज़त कंहिं ॾिनी ऐं लाॻापियल इदारनि तरफ़ां वक़्त सिर कार्रवाई छो न कई वई। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि ऐं ज़िलनि में जाली ऐं गैर मयारी दवाउनि जे विकिरे बाबति अॻु बि शिकायतूं साम्हूं ईंदियूं रहियूं आहिनि। सिहत जे शोबे सां लाॻापियल हल्क़नि जो चवणु आहे त जेकॾहिं निगरानीअ जो निज़ाम मौसरु हुजे त अहिड़ियूं दवाऊं मार्केट ताईं पहुची न सघंदियूं। माहिरनि मूजिबि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ऐं सिंध जे सिहत खाते जी ज़िमेवारी आहे त दवा साज़ कंपनियुनि, मेडिकल स्टोरनि ऐं सप्लाई चेन जे सख़्तु निगरानी कनि, जीअं अवाम ताईं महफ़ूज़ ऐं मयारी दवाऊं पहुचनि। ॿिए तरफ़ सिहत जे शोबे में उहो बि बहस जारी आहे त कुझु दवा साज़ कंपनियुनि ऐं मेडिकल स्टोरनि ख़िलाफ़ माज़ीअ में बि कार्रवायूं थियूं, पर मुस्तक़बिल मसलो ख़तमु न थी सघियो। कुझु माहिरनि जो ख़्यालु आहे त जेकॾहिं ज़ाब्तनि ते सख़्तीअ सां अमल थिए ऐं ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ बिना इम्तियाज़ कार्रवाई कई वञे त जाली दवाउनि जो कारोबार ते ज़ाब्तो आणे सघिजे थो। सिहत जे माहिरनि जो उहो बि चवणु आहे त जाली या गैर मयारी दवाउनि जो सभ खां वॾो नुक़सानु आम मरीज खे थिए थो, जेको इलाज जी उमेद सां दवा ख़रीद करे थो पर खेन घुर्बल फ़ाइदो नथो मिले ऐं कॾहिं कॾहिं संदनि सिहत खे वधीक ख़तरो बि पैदा थी सघे थो। हाणे अवाम ऐं सिहत सां लाॻापियल हल्का मुतालबो करे रहिया आहिनि त ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी जी रिपोर्ट जे बुनियाद ते जाली ऐं गैर मयारी दवाऊं ठाहींदड़ कंपनियुनि ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कई वञे, ज़िमेवार आफ़ीसरनि ऐं लाॻापियल अमले जे एहतसाब कयो वञे, गैर मयारी दवाऊं विकिरो कंदड़ मेडिकल स्टोरनि ख़िलाफ़ सख़्त कदम खयां वञनि, सूबे में दवाउनि जे मयार जो निज़ाम वधीक मज़बूत बणायो वञे। सिहत जे शोबे जे माहिरनि जो उहो बि चवणु आहे त जेकॾहिं रिपोर्टुनि ताईं ई कार्रवाई महदूद रही ऐं ज़िमेवारनि खे कानून जे कचहरे में न आंदो वियो त अवाम जो सिहत वारो निज़ाम ते एतमाद वधीक मुतासिर थींदो। सिंध में महफ़ूज़ मयारी ऐं मौसरु दवा यकीनी बनाइण जे लाइ शफ़ाफ़ एहतसाब ऐं सख़्त निगरानीअ खे वक़्त जी अहम ज़रूरत क़रार ॾिनो पियो वञे।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान जी एफ एम 88 नेटवर्क।

0: It's 10 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Dex Ointment.
2: Tez aaram, muasir hifazat aur qabile aitmad mayar.
1: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News. Aap sun rahe the GAFM Network par KTN News.
4: सुबह हो या शाम बस जीए एफएम ऑन करो अपने दिन को ऑसम सुपर हिट वाला रन कर
5: घर वांदो उते असांजो रत वांदो शहीद जुल्फकार भुट्टो असांखे सेखारियो आहे त कश्मीरन जो फैसलो सिर्फ़ कश्मीरी कंदा